आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हरियाणवी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल

0: कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अक्षय उदक और साथियों के स्वर में मातृवंदना।

आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ के प्यारे गुणगान। मातृभूमि के चरणों में नमन करने के पश्चात आइए नमन उस परम परमात्मा को जिसने हमें ये अनमोल जीवन दिया। सुनवा रहे हैं आपको कल्पना जौकरकर के स्वर में ये बात।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए शीला वर्मा के स्वर में ये भक्ति।

0: जगजीत सिंह के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। अब लीजिए सुनिए श्रोताओं कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन केंद्रित है अंधानुकरण और चिंतक है डॉक्टर केशव कान्हेरे।
1: महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। वह तैयार होकर अपने माता पिता के पास आया। उसने माता पिता के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। माता पिता ने आशीर्वाद देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। जैसे उसने अपने कदम बढ़ाए, पिता ने कहा, थोड़ी देर ठहर जाओ, जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, वही बातें तुम्हारे जीवन में सार्थक सिद्ध होगी। कॉलेज में तुम्हें अनेक प्रकार के सहपाठी मिलेंगे, कक्षा में नए नए मित्र या दोस्त बनेंगे, परंतु दोस्ती सोच विचार कर करना। आज का युग बड़ा विचित्र युग है। पश्चिमी अंधानुकरण के फलस्वरूप आज की युवा पीढ़ी फैशन, मौज मस्ती, अनाप शनाप खान पान, भोग लिप्सा आदि में जीवन व्यतीत करने में मस्त हैं। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु स्वार्थ सिद्ध करने की दृष्टि से अनेक यार दोस्त एकत्रित हो जाते हैं और यही उम्र और समय अपने आप को बुरी संगत से दूर रखकर सुसंगति की ओर ले जाने में सक्षम होती है। अतः मित्रता दोस्ती सोच समझकर परखकर करना हितकारक होगा। एक कहावत प्रसिद्ध है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। मित्र या दोस्त भगवान सूर्य नारायण जैसा होना चाहिए। सूर्य नारायण अपने स्वयं प्रकाश से सभी का अंधकार दूर कर उन्हें जीवन देकर प्रकाश मार्ग दिखाता है। ठीक उसी की भांति जो अपने मित्र को स्वयं के आचरण से उसे सदैव सन्मार्ग की ओर निस्वार्थ भाव से अग्रसित करे वही सच्चा मित्र कहलाता है। संत तुलसीदास ने कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर किए चारी।

0: विपत्ति काल में धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की पहचान परक होती है। तुलसी ने मित्र का उल्लेख समझ पूर्वक किया है। श्री कृष्ण और अर्जुन परम मित्र थे। श्री कृष्ण ने सदैव अर्जुन का साथ दिया था। विपत्ति काल में भी अर्जुन मित्र को भुला नहीं पाया और न ही श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ छोड़ा। उसी प्रकार श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता थी। अपने मित्र सुदामा की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण ने उसे लज्जित नहीं किया, वरन उसके जीवन का सारा दुख दर्द ही मिटा दिया। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती प्यार फूलों से करो, कांटों से नहीं। जिस प्रकार फूल निस्वार्थ भाव से माली से लेकर फूल तोड़ने वालों तक अपनी सुगंध से आनंद प्रदान करता है, परंतु कांटा चुभने पर वह दुखदायी होता है, हम तुरंत उसे निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक इसी तरह अच्छे और बुरे मित्र की यही पहचान होती है।
1: अंधानुकरण, इस विषय पर केंद्रित चिंतन अभी आपने सुना। चिंतक थे डॉक्टर केशव कान्हेरे। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब आनंद लीजिए संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पाठ के संगीतमय प्रसारण का। आज कलाकार हैं सुरेश वाड़े।

जहाँ कहीं भी रामचरित का गान होता है, ब्रह्म में सदैव तल्लीन रहने वाले मुनिगण वहाँ खींचे चले आते हैं। राम के राज्यकाल में अवधपुरी में चहुं ओर सुख और शांति व्याप्त है और इसी कारण सनकादि मुनि वहाँ पधारे हैं। इनके रूप में मानो चारों वेदों ने बाल रूप धारण कर लिया है। अगस्त्य मुनि के आश्रम से आए इन पुण्यात्माओं का श्री राम ने सादर सत्कार किया, दंडवत प्रणाम निवेदित कर अपना पीतांबर बिछाकर उन्हें आसन दिया। प्रभु की इस विनम्र भंगिमा और अद्भुत रूप ने उनका मन मोह लिया, वे प्रेम विफल हो गए। स्वयं श्री राम इस अवस्था में भाव विभोर हो बोले, बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है, साधु संगति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत विषय वासना में रत लोगों का संग जन्म और मृत्यु अर्थात आवागमन के कुचक्र में डालने वाला होता है। ये वचन सुनकर मुनिगण उनसे अखंड और अचल भक्ति की याचना करते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का संगीतमय प्रसारण। आज कलाकार थे सुरेश वाडकर। और श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम कृषि समय की का। आज इसमें जानिए ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में कीट रोग नियंत्रण। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता।
1: किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंग अपने प्रदेश में काफी क्षेत्र में लगाई गई है और ग्रीष्मकालीन मूंग में खास तौर से कुछ कीट एवं रोग व्याधियों का प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल को काफी हानि होती है। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती में हमारा एक सुझाव है कि अधिक से अधिक जो किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग न करें, क्योंकि यूरिया खाद जो है इसकी बढ़वार को बढ़ा देती है और फसल को थोड़ा सा कोमल बना देती है, जिसके कारण कीड़े बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है और इसमें आपके फूल और फली भी कम लगती है। इसलिए किसान भाई जो है यूरिया खाद का प्रयोग मूंग की फसल पर अभी न करें। और जिन खेतों में थोड़े थोड़े पत्तियों पर कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, कीटों में प्रमुख रूप से जो कीट आते हैं वो हरा मच्छर, जयसेड, एफेड, थ्रेप, इस प्रकार के कीट, और एक कीट और इस फसल में आता है जिसे हम सफेद मक्खी के नाम से जानते हैं। यह सफेद मक्खी बहुत छोटी छोटी होती है और काफी जो निरीक्षण करने के बाद में हमें पेड़ों को हिला करके दिखाई देती है। और यह ये जो कीट हैं, ये कीट पत्तों के रस चूस करके जो हमारी अगली फसल है, जो दूसरे हमारे स्वस्थ खेत हैं, वहाँ पर जा करके ये रस छोड़ देते हैं। तो ये जो विषाणु रोग के कीटाणु हैं स्वस्थ फसल पर जा करके जब छोड़ते हैं तो हमारी जो रोगग्रस्त फसल है विषाणु से, जैसे उसमें

0: पीले पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं और काफ़ी दूर से फसल के जो ऊपर के तीन चार पत्ते होते हैं जो पीले रंग के दिखाई देते हैं और वहाँ से रस चूस करके स्वस्थ फसल पर ये छोड़ते हैं, तो हमारे जो स्वस्थ खेत हैं वह भी विषाणु रोग से रोगग्रस्त हो जाते हैं और फसल में चुर्रा मुर्रा नाम का रोग भी है वह भी काफ़ी तेजी से इन कीटों के द्वारा फैलता है। तो इन कीटों का नियंत्रण करना मूंग की फसल में अति आवश्यक है। इसके लिए किसान भाई मैं एक दवा बताना चाह रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। डाई मेथोएट नाम की दवा है, डाई मेथोएट। यह दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के मान से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें तो आपके जो लगने वाले मूंग की फसल में लगने वाले कीट हैं उनका नियंत्रण होगा और फसल की अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। अब मैं इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि मूंग की फसल में कुछ बीमारियाँ आती हैं, उनके कारण भी मूंग की फसल को काफ़ी हानि होती है। मूंग की फसल पर पत्तियों पर किडनी के आकार के या अनियंत्रित आकार के कुछ भूरे बादामी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी कुछ धब्बे गोल गोल छोटी छोटी आकार की संरचनाओं के से शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे मौसम की अनुकूलता के हिसाब से ये बढ़ते जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं। पत्ती का काफ़ी भाग ये ख़त्म कर देते हैं या पत्ती का काफ़ी भाग धीरे धीरे करके सूख जाता है और पत्ती ऐसी प्रतीत होती है जैसे जल गई हो। तो हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है जो मूंग की फसल में जो खाना बनाने का कार्य करती है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फली उसमें लगती है उसका कार्य प्रभावित होता है और फसल को काफ़ी हानि होती है। अगर इस प्रकार के धब्बे दिखाई दें तो किसान भाइयों आप उसमें एक दवा है उसको आप नोट कर लें, मैनकोजैब नाम की दवा है। मैनकोजैब दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना है। यह दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी लगता है और 500 लीटर पानी में 1250 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगी। दो बार 10 दिन के अंतर से आप इस दवा का छिड़काव कर दें तो कीट एवं रोगों का नियंत्रण अभी जो वर्तमान में फसल है मूंग की उसमें आप ये करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा और अधिक से अधिक आपको उत्पादन प्राप्त होगा।
1: ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में कीट रोग नियंत्रण, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर JC गुप्ता, कार्यक्रम कृषि सामयिकी के तहत। श्रोताओं, कार्यक्रम कृषि समय की अब यही संपन्न हुआ और अब लीजिए जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 7:05 पर सुनिएगा राष्ट्रीय एकता पर आधारित लघुवार्ता हिंदोस्तां हमारा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 7:20 पर और सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिवपुरी की विशेष प्रस्तुति सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आप सुनेंगे रोजाना की तरह सुबह 7:45 पर। आपकी फरमाइशी खतों के साथ हाजिर होंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर सुबह 8:30 पर और सुबह 9:20 पर। सुबह 9 बच्चों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा उनका पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा। इस क्रम में आज बातचीत करेंगे सड़क पर गाड़ी चलाते समय की सावधानियां, अपनी माँ का सम्मान करें, गर्मियों की छुट्टियां अवसर का लाभ उठाएं। साथ ही हमारे बाल साथियों को सुनवाएंगे बाल गीत। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा सुबह 10:00। भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित अन्य कार्यक्रमों में सुनिएगा दिन में 11:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग और 1:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत। प्रस्तुति शिवपुरी केंद्र की रहेगी। हमारे स्टूडियो से सुबह 10:05 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सलीम झनकार और साथियों की गाई चंद कव्वालियां। हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 7:21 पर ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे जनगणना 2027, अपनी वास्तविक जानकारी दें, शासन का सहयोग करें, समग्र विकास का आधार शिक्षा, जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं। साथ ही सुनवाएंगे एक भेंटवार्ता जिसका विषय रहेगा आधुनिक तकनीक से कुक्कुट पालन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता और आपसे बातचीत करेंगे श्री SS चौधरी। श्रोताओं सुनिएगा कुछ लोकगीत और जानिएगा मौसम का हाल। श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 6:55 होने को है। अब संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा।

0: सोमनाथमन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वर्षपूर्त्यवसरे टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये 9 मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-उत्तर-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दास्थले अद्य रजतजयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन आगामिषु 2-3 दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। VCK और IUML पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत

0: उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिटिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है राष्ट्रीय एकता पर आधारित लघु वार्ता हिंदू सिता हमारा।

आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाए, राष्ट्रीय एकता को अखंड बनाकर इस देश का मान बढ़ाए, देश प्रेम का अलख जगाकर आजादी का जश्न मनाए, आओ अपनी एकता से देश को ऊंचा उठाए। किसी ने सच कहा है, एकता मूल मंत्र है विकास का, देश के सौंदर्य और उद्धार का। याद रखो, एकता का मान तभी होगी देश की शान। श्रोताओं, कहते हैं पराधीन सपने हो सुख नहीं, यानी पराधीन व्यक्ति सपने में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। स्वतंत्रता एक अमूल्य निधि है और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी। लेकिन जब कोई दूसरा राष्ट्र किसी देश पर राज्य करने लगता है तो वह अपनी सुविधा अनुसार अपने मतलब के लिए नियम कानून बना लेता है, वहां की हर चीज पर अपना अधिकार जताता है, लोगों को असहाय कर उनका शोषण करता है। और ऐसा ही हम भारतवासियों के साथ हुआ जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। लेकिन हमारे देश के वीरों ने एकजुट होकर अपनी जान की परवाह किए बिना इस लड़ाई को लड़ा और हमें आजादी दिलाई। इस एकता से ही दुश्मनों की हार और हमारी विजय हुई। इस एकता की शक्ति ने ही 15 अगस्त के दिन हमें आजादी दिलाई और 26 जनवरी के दिन हमारा देश गणतंत्र बना। श्रोताओं, हमें उन वीरों की एकजुटता, उनके साहस, उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमारा देश एकता अखंडता की मिसाल कहा जाता है। अनेक धर्म, जाति, वर्ण और समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, किंतु फिर भी यहाँ अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु भाषाएं भेद होते हुए भी प्रत्येक भाषा में बहने वाली चिंतन धारा एक है। और यही कारण है कि देश में राष्ट्रीय एकता आज भी कायम है। श्रोताओं, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र एवं प्रदेश के व्यक्ति को समान रूप से अधिकार है अपने स्वयं निर्णय लेने का, संसद की सदस्यता प्राप्त करने का, जिससे प्रत्येक व्यक्ति शासन व्यवस्था से जुड़ पाता है और इससे भी राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती है और राष्ट्र की एकता बनी रहती है। श्रोताओं, राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारा प्यार ही है जो हमें देश से और आपस में जोड़े रखता है। श्रोताओं, देश के प्रति हमारा प्रेम यदि अटूट है, हमारी एकता में मजबूती है, तो हम अपने देश को और भी खुशहाल, और भी सुंदर, और भी सशक्त बना सकते हैं। हमारे देश की एकता, और ये हमारे देश की एकता का ही प्रतीक है कि भले ही कई बुराइयों ने, अनैतिक शक्तियों ने हमारे देश को, हमारे देश की अखंडता को, एकता की को खंडित करने का दुस्साहस किया हो, परंतु हमारा देश ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूता गया और यही सपना देखा था हमारे वीर शहीदों ने। भाई भाई एक हो और भावना भी नेक हो, आओ मिल निर्माण करें ऐसा अपना देश हो। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता पर आधारित लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर, कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में 1189 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीहोर जिले के भिरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज होगा शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ 2 दिन पहले हो गया है। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक कहलाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और

0: सिक्के भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर भी होंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन बनाए जाने के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। वे इसी दौरान वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत विकसित इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉ. यादव यहां 1059 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इन विकास कार्यों से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य गुना जिले में औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मालवा उत्सव में भी शामिल हुए।
1: मेला मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए आत्मीयता बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए रजत जयंती वर्ष में धूमधाम के साथ ये आयोजन हो रहा है और 125वीं जयंती में हम सब मिले इस कामना के साथ मैं अपनी ओर से 5 लाख रुपया हमारे इस आयोजन के लिए संस्था को देने की घोषणा भी करते हैं।
0: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों के जरिए समय पर वेतन भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक भी कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। अब समाचारों वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के भैरुंदा में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 1763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा। योजना में सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण होना है। इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे लाभान्वित होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकेंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से कहीं अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक

उस मिसाल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक कर दिया गया है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रनों पर सिमट गई। आज के मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। वहीं रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैतूल कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने कल समीक्षा बैठक की। इसमें जल संचय, जन भागीदारी और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की गई। डिंडोरी जिले में कल पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर के विभिन्न इंडिकेटर्स की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ जिले में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में हीट स्ट्रोक से बचाव के तैयारियों की समीक्षा की। और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। आगे दीजिए, नमस्कार।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर गीतकार कैफी आजमी, आज इनकी है पुण्यतिथि, तो आज हम सुनवाएंगे आपको उनके लिखे कुछ गीत और साथ ही रूबरू होंगे उनके जीवन की कुछ झलकियों से। श्रोताओं, कैफी आजमी एक प्रसिद्ध उर्दू शायर गीतकार और प्रगतिशील लेखक थे। उन्होंने न केवल गीतकार बल्कि लेखक और अभिनेता के रूप में भी काम किया। कैफी आजमी ने कई गीत लिखे जिनमें बुज़दिल, इस फिल्म जो कि 1951 में आई थी, उनका पहला गीत था। फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में कैफी आजमी की रचना फिल्म अर्थ से।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मशहूर उर्दू शायर गीतकार कैफ़ी आज़मी की। श्रोताओं, कैफ़ी आज़मी साहब ने बहुत कम उम्र में ही शायरी शुरू कर दी थी और अपनी कविताओं में प्रेम के साथ साथ प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारों को भी जोड़ा। आपने भारतीय सिनेमा में उर्दू शायरी को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 साल की उम्र में पहली गज़ल लिखी और जल्द ही मुशायरों में वे लोकप्रिय हो गए थे। सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आखिरी खत का ये गीत। गीत लिखा है कैफ़ी आज़मी ने, संगीत खय्याम

श्रोताओं, कैफी आजमी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, जैसे कागज के फूल, हकीकत, अर्थ, हीर रांझा, पाकीज़ा, कर चले हम फिदा जैसे देशभक्ति नज्म आपकी पहचान थी। उन्हें पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीर रांझा का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी के लिखे कुछ गीत। श्रोताओं, शुरू में कैफी आजमी के लिखे गीत बहुत मशहूर हुए, पर फिल्म कुछ खास न चली और फिल्म इंडस्ट्रीज में उनको काम मिलना कुछ कम हो गया। ऐसे में चेतन आनंद जी ने कैफी आजमी से कहा, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे फिल्म के गाने आप लिखें। कैफी आजमी ने कहा, आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।

और तब हकीकत फिल्म के लिए कैफी आजमी जी ने गीत लिखे। फिल्म के सभी गीत और फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट रही। चलिए आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का

श्रोताओं, कैफ़े आज़मी अपनी शायरी और विचारों से हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और इनकलाब का पैगाम देते रहे और अपनी रचनाओं के ज़रिए हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में। और आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुमिता। श्रोताओं, आज है 10 मई यानी मई महीने का दूसरा रविवार, और आज का दिन मनाया जाता है मातृत्व दिवस यानी मदर्स डे के रूप में। श्रोताओं, माँ एक ऐसा शब्द जिसमें बहुत से किरदार छिपे होते हैं, जो बच्चों की पहली शिक्षक बनती है, बच्चों के थोड़ा बड़ा होने पर उनकी दोस्त, उनकी मार्गदर्शक बनती है और मुसीबत आने पर उनके आगे ढाल की तरह खड़ी हो जाती है। इसीलिए इस शब्द में बहुत शक्ति होती है। माँ का कर्ज ना भुलाया जा सकता है और ना ही चुकाया जा सकता है, क्योंकि जीवन में माँ से बहुत से रिश्ते जुड़े होते हैं, मासी माँ, दादी माँ, नानी माँ, भाभी माँ, और इस सभी रिश्तों में माँ की एक प्यारी सी झलक होती है। दुनिया में एकमात्र निशर्त निस्वार्थ प्यार अगर है तो वो है माँ का प्यार। एक माँ का पूरा जीवन अपने बच्चे के विकास, उसके कल्याण, उसकी भलाई के इर्द गिर्द घूमता है। माँ केवल बच्चे को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने बच्चे की देखभाल, उसका सर्वांगीण विकास, उसमें संस्कारों का सृजन, प्रेम, अपनत्व, दया, परोपकार भावों के बीजों का रोपण भी करती है। वह सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, हौसले में कभी कमी मत आने दो। मुश्किल से मुश्किल समय से लड़ना एक माँ ही सिखाती है। वो सिखाती

होती है असफलता से कभी निराश नहीं होना और ईमानदारी से प्रयास करते हुए असफलता को चुनौती देते रहना चाहिए और एक दिन असफलता ही हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। वो माँ है जो हर मोड़ पर रास्ता दिखाती है। हम सब के जीवन में करुणा और ममता से भरे इस माँ शब्द का बहुत खास स्थान है, जिसे हम भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। और इसलिए कहा भी गया है कि खुदा अगर हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने माँ बनाई। और ऐसा नहीं है कि माँ बनाकर वो बहुत खुश हुआ या उसने जश्न मनाया, बल्कि वो खुदा बहुत ही पछताया, क्योंकि कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत करना, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत देना, वो भी माँ करने लगी। और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया और वह बहुत ही मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। वाकई श्रोताओं, माँ के त्याग और उनकी ममता को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है, लेकिन इस खास दिन मातृत्व दिवस के अवसर पर अपनी भावनाओं को, अपने प्यार को, माँ के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त कर हम उनकी समर्पण, त्याग और प्यार की सराहना तो कर ही सकते हैं। हर बच्चे का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वो अपनी माँ को वो प्यार, वो सम्मान दे जिसकी वो हकदार है। आज मैं भी अपनी माँ के लिए यही कहूँगी, माँ आप मेरी पहचान हैं, आप मेरा आदर्श हैं। मैं जानती हूँ कभी कभी आप सख्त हो जाती थी, मुझे डांटती थी, इसलिए नहीं कि आपको ना कहना बहुत अच्छा लगता था, बल्कि इसलिए कि आप जानती थी कि मेरे लिए क्या बेहतर है। आपके डिसिप्लिन ने मुझे सही और गलत के बीच, आसान और मुश्किल के बीच फर्क सिखाया, यहाँ तक कि जूते के फीते बांधने सिखाने से लेकर मेरे सपनों को साकार करने में मेरी मदद करने तक आप हर कदम पर मेरे साथ रहीं। और आज भी, आज मेरे साथ दूसरी माँ है, वो भी मेरे हर मुश्किल में मेरे साथ रहती है। थैंक यू सो मच माँ। मेरी तकलीफ में मुझसे ज़्यादा मेरी माँ ही रोई है, खिला पिला के मुझको माँ मेरी कभी भूखे पेट भी सोई है, कभी खिलौनों से खिलाया है, कभी आंचल में छुपाया है। गलतियां करने पर भी माँ ने मुझे हमेशा प्यार से समझाया है। माँ, तेरे स्पर्श से हर गम दूर हो जाता है, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, ये वो एहसास है जो हमें जीना सिखाता है।

श्रोताओं, आज मातृत्व दिवस के अवसर पर सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, आपको जानकारियां आगे देंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: संदेश के बाद स्वागत कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में। और श्रोताओं, अब चलते हैं खबरों और जानकारियों की तरफ। और आपको बता दें, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने शनिवार को ग्राम टोंगरा एवं राजगढ़ स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने CHO एवं आशा कार्यकर्ताओं से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में डिप्टी कलेक्टर मोतीलाल अहिरवार की अध्यक्षता में ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत गत दिवस बैठक संपन्न हुई। प्रदेश सरकार द्वारा ज्ञान भारत मिशन शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपि का संरक्षण करना है। इस मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें विभिन्न प्रबुद्ध जनों को शामिल किया गया। सभी के सुझाव लिए गए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में मौजूद प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों के संरक्षण एवं पांडुलिपियां, शिलालेख और पुरातन जानकारियां खोजने हेतु ठोस रणनीति तैयार करना था। डिप्टी कलेक्टर ने सभी उपस्थित प्रोफेसरों और संस्था प्रमुखों से आग्रह किया कि वे शोध संस्थानों और कॉलेज के छात्रों को इन पांडुलिपियों पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक समाज तक पहुंचाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपनी विशेषज्ञता का लाभ इस मिशन को जरूर दें। पिछोड़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत से सेमरी में शनिवार को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कार्यक्रम में जिला पंचायत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी NS नरवरिया जी ने कार्यक्रम में

0: उपरोक्त फीडरों से जुड़े समस्त क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय बंद रहेगा। उक्त फीडरों के बंद रहने से प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक राघवेंद्र नगर, झांसी, तिराहा, इमामबाड़ा, जवाहर कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी, पुरानी शिवपुरी, गोविंद नगर, दीनदयालपुरम, तारकेश्वरी कॉलोनी, नीलगर चौराहा, महल कॉलोनी, खेड़ापति कॉलोनी, आदर्श नगर, तुलसी नगर, कृष्णपुरम कॉलोनी, गुरुद्वारा, राजेश्वरी रोड, वर्मा कॉलोनी, लुधावली, आहार पोषण केंद्र, PSNL, ITBP, साची दूध डेयरी एवं ओम डिस्पोजल इत्यादि क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। इसी प्रकार 33/11 KV बाणगंगा उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले 11 KV फीडरों पर AB स्विच लगाने के कार्य किए जाने हेतु 10 मई यानी कि आज उक्त फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय बंद रहेगा। उक्त 11 KV विष्णु मंदिर, टीवी टावर, आरकेपुरम, चिलौत सिटी फीडर, चेसोन चिराया फीडर, दोबत्ती चौराहा, फिजिकल रोड, सेलिंग क्लब फीडर इत्यादि से संबंधित क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। तो श्रोताओं, आज के अंक के लिए बस इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो सखी सुमिता को कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: शिवपुरी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। सुबह के 8 बजे अब
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता R. Ashoka ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
2: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोयस ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन

0: प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुँचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
7: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक चार श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
8: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
12: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Pet and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
11: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 from Guddebelur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra Scheme. In a major milestone for India's healthcare infrastructure, Mr. Modi will also dedicate Sindhu Hospital to the nation.
13: The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-specialty quaternary care not-for-profit hospital. Founder of Tamil Nadu Vetri Kadagam, TVK, C. Joseph Vijay, will be sworn in as the Chief Minister of the state today. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium in Chennai at 10 a.m. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, 9 ministers will also be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony as a huge crowd is expected to turn up for the event. More from our correspondent.
14: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to film world through Nalaya Tirpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Varan was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
13: President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as chief minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Mr. Rangasamy to form a new government in the Union Territory. More from our correspondent.
15: With the approval of the President, decks are cleared for the swearing-in ceremony of N. Rangasamy as the new Chief Minister of Puducherry on May 13. Mr. Rangasamy is set to assume office for a record fifth term after the ANRC-led National Democratic Alliance secured a comfortable victory in the assembly elections. 76-year-old N. Rangasamy had earlier served as the Chief Minister of Puducherry from 2001 to 2006 and again from 2006 to 2008 as a Congress leader. After founding the All India NR Congress, he served as Chief Minister from 2011 to 2016 and later headed the ANRC-BJP Alliance government from 2021 to 2026. In the recently held assembly elections, Mr. Rangasamy was elected from both the Thattanchavadi and Mangalam constituencies. In the 30-member assembly, NDA has got the support of 18 MLAs, two more than the majority mark. Vibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
13: Assam BJP Legislature Party will meet in Guwahati today to elect its leader. The newly elected BJP MLAs will meet at the Atal Bihari Vajpayee Bhavan at 9 this morning. Meanwhile, preparations are in full swing for the swearing-in of the NDA government for a third consecutive term in Assam. More from our correspondent.
4: The BJP Legislature Party meeting will be held in presence of BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda and Co-Observer Nayab Singh Saini. Following the meeting, the NDA Legislature Party meeting will be held at the same venue. Thereafter, the NDA Legislature Party will meet Governor Laxman Prasad Chaya to stake claim to form the government. Meanwhile, preparations are being carried out on war footing at the Veterinary College ground in Khanapara for the oath-taking ceremony scheduled to be held on May 12. The Kamrup Metro District Administration has also issued a set of traffic regulations in the city for the day. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the swearing-in ceremony. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
13: The top brass of the Congress Party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, Party General Secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, General Secretary, Organization K.C. Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and V.D. Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures under the Labour Codes. by linking labor law compliance directly with eligibility for government contracts and bidding. The measures seek to curb delays in wage payments and defaults in statutory dues affecting contract workers. A report.
16: The new framework operationalizes worker protection envisaged under the four labor codes while introducing stricter penalties including debarment and blacklisting for firms violating timely wage and social security contributions. Under fresh instructions issued on Friday, ministries, departments, statutory, autonomous bodies and central public sector enterprises have been directed to strictly ensure that contractors disburse wages within prescribed timelines and the drawing and disbursing officers verify compliance every month. Daily wages should be paid by the end of shift, weekly wages before weekly holiday, fortnightly wages within 2 days of end of fortnight, and monthly wages within 7 days of the succeeding month. The government has further directed that wage payments should be made only through bank transfer or electronic mode, and contractors must electronically inform principal employers after the payment. It said that contracts must contain penalty clauses for delayed wage payments and further ask ministries to ensure adequate fund availability before awarding manpower contracts. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
13: Defence Research and Development Organisation has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar jointly handed over an agro-processing facility in South Trinidad, along with the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar. In a social media post, Dr. Jaishankar said that the facility, powered by India's Seeds Initiative, will strengthen Trinidad and Tobago's small and medium-sized enterprises ecosystem, providing fresh impetus to its farming sector. He also launched a permanent prosthetic center in Pinal, Trinidad and Tobago. Dr. Jaishankar said that the center is a gift of mobility and dignity for the country and wider CARICOM region. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of its modern journey, evolving into a global center of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. We have a report from our correspondent.
17: Under the Mission Life initiative, the temple is setting benchmarks in sustainability by converting floral waste into compost and plastic waste into paver block. Furthermore, with advanced sewage treatment plants, rainwater harvesting system and Miyawaki forest, the trust is rapidly moving towards net zero carbon footprint. Digital initiatives now allow devotees worldwide to book pujas and receive prasad at their doorsteps. Today, the shrine attracts over 97 lakh devotees from across the world, supported by world-class infrastructure connectivity, including Vande Bharat and international airports. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
13: On to sports. In boxing, India's under-15 girls delivered commanding performances in the semi-finals at the Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships, with 9 boxers advancing to the finals across weight categories in Tashkent. India enjoyed a strong outing as Akshita scored an RSC win in the 30-33 kg category against Kazakhstan Aizan Marat. Tanvi in 43 kg, Hanshika Atri in 46 kg, Sunena in 58 kg, and Bhumika in 61 kg also registered RSC victories, while Anzi claimed a dominant 5-0 win in the 37 kg category and Sonia Cruz to a 5-0 victory in 40 kg. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
18: Thank you, Shagun. The Statesman highlights Suvendu Adhikari sworn in as Bengal CM, while the Times of India adds NDA show of strength as Suvendu sworn in as first BJP CM of Bengal. Hindustan Times: Prime Minister bows, thanks voters, notes the pioneer. Numbers in order, Vijay to be TN Commander-in-Chief, notes Hindustan Times. The Statesman headlines: TVK crosses final hurdle for majority, secures IUML's VCK's support for forming Vijay Sarkar. Agni 5 tested, capable of multiple nuclear strikes, cites Hindustan Times. India tests advanced Agni missile from Odisha coast, reports the Pioneer. The Asian Age reports, Lieutenant General Raja Subramani appointed as next CDS Swaminathan to helm Navy. The Tribune reports, Pak China affairs experts, Lieutenant General Raja Subramani picked up as next CDS Swaminathan named Navy Chief. Hindustan Times headline states, Vinesh gets WFI notice, returns set get delayed, while the Indian Express headlines, Vinesh comeback hits a hurdle, WFI bars her from competing until June 26th. In a Mother's Day special piece titled, Giving Them Roots, the Indian Express mentions, inspiring stories of motherhood, pointing, motherhood may not give you awards, but it certainly gives you battle scars and memories. And finally, Indian tourism waking up to its floral power, the Financial Express writes, the demand for flower-centric travel is witnessing strong growth. And with that, it's back to you, Shagun.
19: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises four labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And nine Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
20: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर. श्रोताओं, सुबह के 8:30 हुए हैं. प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश. कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत. कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुदरत से, आवाज़ लता मंगेशकर की. मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी वर्मन साहब ने, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम व पोस्ट देहरो तहसील कोलारस जिला शिवपुरी से डॉक्टर शिवनारायण अग्रवाल, रामनिवास, बिदाम जडार, मुंशी धाकड़, सूरज सिंह रावत, देवेंद्र और मोहन सिंह रावत. नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन. आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म कुदरत का ये गीत.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप ही के पसंद के फिल्मी नगमे, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अगला फरमाइशी खत हम ले रहे हैं संजय रेडियो श्रोता संघ ग्राम व पोस्ट चित्री तहसील नरवर जिला शिवपुरी से। हमारे श्रोतागण हैं संजय कुमार केवट, नवल किशोर, मुकेश, भीकम, अंकित, प्रशांत, मयंक, दिलीप, देव, हेमानी, राखी, वर्षा, लक्ष्मी, गिरजा, भावना, रेखा, किरण, छाया, कृष्णा, अंजलि और परिवार के इनके सभी सदस्य। रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। गांधी कॉलोनी शिवपुरी से सौरभ गौड़, ममता, कृष्णा, इशिता और परिवार के इनके सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दो रास्ते का ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: संदेश के बाद स्वागत कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अगला फरमाइशी खत हम ले रहे हैं गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम, राहुल, नरेंद्र, धासु, छोटू, मिन्नी, सपना, खुशबू, रीना, रेखा, ममता और समस्त नामदेव परिवार। कमलागंज बाबू क्वार्टर के पीछे से श्रीमान कन्हैया कुशवाहा, भारती, ध्रुव, गगन, सोनम, अशोक, दुर्गेश, सुरेंद्र और सागर कुशवाहा। करेरा काली माता के पीछे से मनोज झा, मिथिलेश, नैना, मोनू और विकास झा। गणेश कॉलोनी खंडेलवाल फैक्ट्री के पीछे से श्रीमान कन्हैया, श्रीमान कालीचरण, उषा, शुभम, कुमकुम, शिवानी, हरिओम, गुड्डी, ऋतिक और ऋतु। आप सभी श्रोताओं को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं श्रोताओं, आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगला गीत हम ले रहे हैं हसीना मान जाएगी। इस फिल्म से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में, अख्तर रुमानी की ये रचना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें ख़त भेजा है सखी रेडियो श्रोता संघ शिवपुरी से सोनिया, दीपिका, निधि, नीना, अंजू, अलका, विनीता, अंकिता, सोनम, सलोनी, अर्चना, पूजा, अल्पा, राजश्री, अपूर्वा, खुशबू, शालिनी, स्वाति, शिप्रा, रिचा और इनकी सभी सखियाँ। न्यू ब्लॉक शिवपुरी से श्रीमती निर्मला देवी, संध्या, मोनिका, तरुण, अरुण, अभय, जया, अमन, शुभम, अक्षय, विहान, डॉली और परिवार के इनके सभी सदस्य। सुनिए आप सभी की पसंद का ये।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और श्रोताओं, अब अगला फरमाइशी खत्म ले रहे हैं। गांव बड़बू जी आगर से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश। इसी गीत को सुनने के लिए हमें खत आया है पुरानी छावनी सकतपुर रोड जिला गुना मध्य प्रदेश से। कमल सिंह कुशवा, राजकुमार, गोलू, कृष्णा, वर्षा, पूनम और मोहिनी कुशवा, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कन्यादान का ये गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। लीजिए सुनिए।

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सब।

जय हिंद बच्चों, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे श्रोताओं का उनके खास कार्यक्रम बाल सभा में बहुत बहुत स्वागत। और बच्चों, आज आपसे बहुत सारी बात करने आपके साथ मैं हूँ, आपकी दीदी सुमिता। बच्चों, अभी शुरू हो गई है गर्मियों की छुट्टियाँ, और गर्मी की छुट्टियों में जो समय होता है वो आपको स्कूल से दूर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शामिल होने का अवसर देता है, जैसे परिवार के लोगों के साथ समय बिताना, नई जगहों पर घूमने जाना, आपकी जो भी हॉबी है उसे पूरा करना, नई नई चीज़ें सीखना, इन सभी के लिए एक मौका होता है। साथ ही जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वहाँ की संस्कृति के बारे में समझते हैं और जानते हो। ये समय होता है बच्चों अपने कौशल को, अपने हुनर को जानने का, अपने कला को विकसित करने का। इस तरह ये गर्मी की छुट्टियों का अवकाश, जो छुट्टियाँ हैं, वो आपको तरोताज़ा कर देती हैं और आप आने वाले स्कूल समय और नई क्लास की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं बिल्कुल फ्रेश मूड में। बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए यादगार बन जाती हैं, तो इस गर्मी की छुट्टी आपने क्या क्या प्लानिंग की है ये आप हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा अपने खतों के माध्यम से। बच्चों, स्कूल के समय तो आप पूरी तरह से अपने सिलेबस में व्यस्त रहते हैं, आप को ये समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। और जब आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है, और छुट्टियों में की गई आपकी ये तैयारी भविष्य में आपके करियर के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बच्चों, गर्मी की छुट्टियों का ये समय बहुत ही कीमती होता है, बस ज़रूरत है कि हम इन छुट्टियों का उपयोग कुछ सीखने में,

नया करने में लगाते हैं, या फिर पूरा समय टीवी मोबाइल में और सोने में गंवा देते हैं। बच्चों, हमारी ये आदत हमें आलसी बनाती है। स्कूल जाने के वक्त हमें समय ही नहीं होता कि हम सुबह सुबह सैर करने जाएं, कुछ व्यायाम करें ताकि हम बिल्कुल फिट रह सकें। तो ये जो गर्मी की छुट्टियां हैं, बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी ताज़ी हवा और सूरज की किरण में जब आप सैर करने के लिए निकलोगे ना, तब देखना आपका पूरा दिन ताजगी और स्फूर्ति से भरा होगा। साथ ही आप सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ आपका पसंद का जो गेम है, खेल है, वो भी खेल सकते हो, जो आपको बहुत आनंद देगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, हमारा आपसे यही कहना है कि गर्मी की छुट्टियों में खुद को, खुद के बारे में जानने का अवसर ज़रूर दें। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देकर उसे दूर करने का प्रयास करें। अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें, अपने हुनर को पहचान कर उसे विकसित करें और प्रकृति के बीच अपना कुछ समय ज़रूर बिताएं। और इसके लिए आप अपने परिवार के संग किसी भी हिल स्टेशन पर घूमने भी जा सकते हो। तो इस तरह आपकी छुट्टियों को आप बहुत रोचक और मनोरंजक बना सकते हो। फिलहाल हम आपके मनोरंजन के लिए आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत, तो सुनते हैं ये गीत।

तो बच्चों, गीत सुनकर मज़ा आया? आपने गीत भी सुन लिया और साथ में गाड़ी की सैर भी हो गई। ये सैर तो हुई गीत के माध्यम से, पर बच्चों, आप भी तो गाड़ी चलाते होंगे, और सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमें सड़क के जो सुरक्षा नियम हैं, सेफ्टी रूल्स हैं, उनके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों, हमारी सुरक्षा के लिए इन ट्रैफिक रूल्स का पता होना और इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और फिर बच्चों के लिए भी अलग-अलग जो सड़क के सुरक्षा नियम हैं वो बनाए गए हैं। अगर आप सभी इनके बारे में जानोगे और उन नियमों का पालन करोगे, तो आप भी आगे जाकर एक जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छे वाहन चालक बन पाओगे, और आप सुरक्षित भी रहोगे। तो चलो बच्चों, आपसे कुछ बातें करें कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बता दें बच्चों कि सड़क पर तीन स आपके सच्चे साथी हैं: सतर्कता, सावधानी और समझदारी। बच्चों, सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं या पैदल चलें, तो हमेशा सतर्क रहें, सामने देखें, अपने दाएं बाएं देखें, तभी आगे बढ़ें। साथ ही गाड़ी चलाते समय भी सावधान रहें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। जल्दबाजी में गाड़ी ओवरटेक बिल्कुल ना करें। कई बार देखने में आता है कि कुछ बच्चे गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, ऐसे में अपने साथ साथ वो दूसरों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी की स्पीड ऐसी रखें जो ज़रूरत पड़ने में आसानी से रोकी जा सके। समझदारी दिखाएं और ओवरटेक करने की बजाय आगे वाली गाड़ी को पहले जाने दें। और सबसे खास बात, ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करें। बच्चों, बात ट्रैफिक नियमों की चल रही है, तो ट्रैफिक नियम क्या है इसके बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं। बच्चों, बचपन से ही घर में और स्कूल में हमें ट्रैफिक सेफ्टी सिग्नल्स और चिन्हों के बारे में बताया जाता है। चौराहे पर लगी तीन रंग की ट्रैफिक लाइट, हरे रंग का मतलब है गुजरना यानी कि आगे बढ़ना, और लाल रंग का मतलब है रुकना, और पीली रंग की लाइट का मतलब है वेट यानी कि इंतजार करो और आगे बढ़ने के लिए स्वयं को तैयार कर लो। इसके अलावा हमारे परिवार के लोग अक्सर ये बात भी करते हैं और हमको टोकते हैं कि चलती गाड़ी के बाहर हाथ या चेहरा बिल्कुल भी ना निकालें, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही बच्चों, जब हम गाड़ी चला रहे हैं तब आगे वाले वाहन से बहुत ज़रूरी है कि उचित दूरी रखें, खासकर बारिश के मौसम में। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात ना करें या मैसेज बिल्कुल भी ना करें। अक्सर होता यह है कि मोबाइल पर बात करने से हमारा ध्यान भटक जाता है और हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें। बच्चों, जब हम कोई मोड़ आ रहा है या हमें लेन बदलना है, तो उस समय इंडिकेटर का प्रयोग ज़रूर करें ताकि पीछे आ रहे व्यक्ति को पता लग सके कि आपको मुड़ना है। बच्चों, कई बार ये होता है कि हम बहुत थके हुए होते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि गाड़ी हम उठा कर चल देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि हमारा बैलेंस इस समय बिगड़ सकता है, तो आप पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लें फिर जाएं। तो बच्चों, इस तरह से सड़क सुरक्षा के इन तीन नियमों का, यानी कि सतर्कता, सावधानी और समझदारी, इन तीन नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो दुर्घटना से हम बच सकते हैं और सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। तो आप वादा कीजिए कि सड़क सुरक्षा नियमों का आप पालन करेंगे, गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएंगे, सतर्कता से चलाएंगे और अपनी सूझबूझ के साथ अपने स्थान पर बहुत सुरक्षित स्वयं भी पहुंचेंगे और दूसरों को भी का भी ध्यान रखेंगे। और अब बच्चों, हम बात करें आज के खास दिन की। आप जानते हो आज क्या है, कौन सा खास दिन है? बच्चों, आज है मदर्स डे, यानी मातृत्व दिवस। बच्चों, माँ जो हमारी सारी नादानियों को, सारी गलतियों को भुलाकर सदैव
हमें सिर्फ अपना प्यार, अपनी ममता हम पर लुटाती है। आज मदर्स डे पर हम सभी माताओं को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों कहते हैं कि सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। माँ ही हमें दोस्त बनकर हमारे साथ खेलती है, और जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो माँ ही हमें उस मुश्किल से बाहर आने का रास्ता दिखाती है। यानी माँ हमारी प्रेरणा, हमारी सुपर हीरो, हमारी सबसे अच्छी दोस्त और हमारी मार्गदर्शक है। बच्चों आपने घर पर इसका अनुभव किया होगा कि जब आप किसी काम को ठीक से नहीं कर पाते हो, या कोई बात जो आपके समझ में नहीं आ रही है, किसी चीज़ का आप डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है आपको, तो आप फटाक से दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाते हो और आपकी मम्मी चुटकियों में आपकी हर समस्या का हल निकाल देती है। माना कभी कभी वो सख्त हो जाती है, आपको डांट भी देती है, लेकिन उस डांट में भी उनका प्यार, हमारे प्रति उनकी चिंता, हमें सही रास्ता दिखाने की उनकी कोशिश उनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमें उनकी बातों से चिढ़ना या नाराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। सुबह से लेकर पूरे दिन वो सभी के सारे बारे में दिन भर सोचती रहती है। उनके लिए जो अच्छे से अच्छा काम हो सकता है वो ज़रूर करती है। लेकिन क्या बच्चों आपने कभी अपनी मम्मी के बारे में सोचा कि आज बहुत ज़्यादा काम है, या माँ थक गई है, या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम उनकी थोड़ी सी हेल्प करा दें, तो उससे उनको कितनी खुशी मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। जो बच्चे अपनी माँ की मदद कराते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते हैं, आज मदर्स डे पर ये संकल्प लें बच्चों कि जब भी आपकी माँ को ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। और सच कहूँ बच्चों, ये करने के बाद जो आपको खुशी मिलेगी, आपकी माँ को खुशी मिलेगी, वो बहुत ही अनूठी होगी। ये माँ के लिए सबसे कीमती और सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। बच्चों जिस तरह माँ हमारी हर ज़रूरत, हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करती है, हमारी छोटी छोटी सफलताओं पर ऐसे खुश होती है जैसे वो जीत उसकी खुद की जीत है, हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, हमें भी चाहिए कि हम भी उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनकी बातों को सुने, समझें, उन पर अमल करें। क्योंकि जो बातें हमारी माँ हमें सिखाती है ना, समझाती है, वो शायद हमें किताबों में ना मिले। बच्चों वो माँ ही है जो हमारे बिना बोले हमारी बातों को समझ लेती है। वो माँ ही है जो हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। वो हमें जीवन के हर पहलुओं से अवगत कराती है। बच्चों हमें भी चाहिए कि हम उनकी मेहनत को यूं ही व्यर्थ ना होने दें, उनके प्यार को समझें, उनकी हर बात का सम्मान करें, और सबसे ज़रूरी बात, उनसे झूठ तो हम कभी भी ना बोलें, उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ें। यदि हमसे कोई गलती हो भी गई है तो तुरंत सब सच बता दें। आपकी मम्मी ज़रूर आपको माफ़ कर देंगी और आगे क्या सही है वो भी आपको समझा देंगी। तो बच्चों आपको जीवन में एक अच्छा और एक सफल इंसान बनना है तो अपनी माँ की दी शिक्षाओं को कभी नज़रअंदाज मत करना, उनका और उनके प्यार का हमेशा हमेशा सम्मान करना। लोग तारीफ करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में, जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने कमाल कर दिया। कुदरत मिट्टी को चमकना न सिखा पाई, तूने सिखा दिया।

तो बच्चों आज आप वादा कीजिए कि अपनी माँ के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और अब आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला और घड़ी अब हमसे कह रही है कि लेनी होगी अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों से अनुमति। तो दीजिए अपनी दीदी सुमिता को कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

अभी प्रस्तुत किया गया बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम के आवाज में फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। गीत लिखा था अशद भोपाली ने और संगीत राम लक्ष्मण का था। और इस गीत को सुनने के लिए हमें खत भेजा था राजपुर मध्य प्रदेश से गीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरव और कुणाल दिलवारे। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशिकी से, आवाज कुमार सानू, अनुराधा पुड़वाल की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें खत आया है महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद, किशोर, दीपक, जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप ही की पसंद के कुछ फिल्मी नगमे, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। लीजिए अब सुनिए फिल्म फूल और कांटे का ये गीत, आवाज अनुराधा पोड़वाल और कुमार सानू की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है अम्बेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरव, गौरव, किशोरी बोस, एल पी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और समस्त परिवार। ग्राम बिजौरा जिला सागर से गोलू अहिरवार, दिनेश, अजय और परिवार के इनके सभी सदस्य। सुनिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद का ये गीत।

1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म के लिए लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा ये गीत। संगीत आर डी बर्मन साहब का है और इस गीत को सुनना चाहा है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ जिला सागर से लक्ष्मण रेकवार, श्रीमती विनीता कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रेकवार, हल्ले लल्लू ऋषि रेकवार और बड्डा। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ख़त भेजा है सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल, अनामिका अवंतिका शिवालिका, पारसमणि पंजाब राव और संदीप पाटिल। लीजिए सुनिए श्रोताओं आप सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से आप ही के पसंद के कुछ फिल्मी नगमे, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अगला फरमाइशी खत हम ले रहे हैं चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, श्रीमती कुमारी साहू, अजय और जय किशन साहू, ग्राम दुर्गापुर, पोस्ट बडेरा, तहसील पिछोड़, जिला शिवपुरी से मानसिंह आदिवासी, श्रीमती मीना देवी, बिटिया वैष्णवी, भावना, पुष्पा, सत्येंद्र, राहुल, हरविलास, श्रीमती मरती, मुन्ना लाल जी एवं समस्त आदिवासी परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का ये गीत, आवाज अनुराधा पोड़वाल और साथियों की, समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

और श्रोताओं, अब हम फरमाइशी खत अगला ले रहे हैं। प्रिय दर्शनी आकाशवाणी श्रोता संघ जिला जलगांव से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दंगल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बड्डू दादा। जय हीरा मन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर से विनोद नारायण कुशवा, नारायण सिंह कुशवा, मनकोबाई, निशा, प्रियंका, इशिता, कपिल, ब्रजभान, गजराज, मांगीलाल, नरेश, बालाराम, लक्ष्मण रेकवार, दातार सिंह और हसीना बी मंसूरी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म तेजाब का ये गीत, आवाज अनुराधा पोड़वाल और अमित कुमार की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दीजिए सुनिए।

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10 बजने को है। अब कार्यक्रम जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उमरिया जिले की चिट्ठी। आलेख अरुण त्रिपाठी, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। उमरिया जिले में कल प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, विद्युत निगम तथा खाद्य विभाग की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय सीमा में आम जनता तक पहुंचे तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्वीकृत कार्यों में से 289 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण को जन अभियान का रूप दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन कार्य बीते 15 अप्रैल से किया जा रहा है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। बीती 9 मई तक जिले में 13,597 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जिनमें से 10,129 किसानों ने स्लॉट की भी बुकिंग कराई है। उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने भी कल गेहूं उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीती 28 अप्रैल को 4 साल की मादा हथिनी गायत्री की मौत हो गई। पार्क प्रबंधन ने मृत हथिनी की मौत का कारण एंथ्रेक्स नामक संक्रामक बीमारी के प्रकोप का होना बताया, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए समीप जंगलों में इस संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपचार और बचाव के निर्देश जारी किए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही बीती 15 अप्रैल को बाघ संरक्षण के विभिन्न आयामों पर सार्थक संवाद और लंबित बाघ मृत्यु प्रकरणों का शीघ्र एवं वैज्ञानिक तरीके से अंतिम निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मध्य प्रदेश राज्य वन प्राणी शाखा भोपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार दिल्ली तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई थी। उमरिया जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम प्रकल्पकों और सुपरवाइजरों के माध्यम से घर घर जाकर कराया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी अधिकारी जनगणना प्रत्युष श्रीवास्तव ने बताया है कि जिले की जनगणना को लेकर मकानों के सूचीकरण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य के विपरीत 1,14,251 मकानों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसी क्रम में उमरिया जिला कलेक्टर राखी सहाय ने मानपुर जनपद पंचायत पहुंचकर वहां सहरा ग्राम में की जा रही सूचीकरण की एंट्री HLO ऐप के माध्यम से अपने समक्ष करवाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य की जानकारी ली तथा प्रगणकों से निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करने के संबंध में निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए ताकि शासन को सही आंकड़े प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की

महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जनगणना कार्य में सहयोग करें ताकि जिले का सही आकलन हो सके। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी और जनपद सीईओ मानपुर अंकित सिरोठिया सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,386 लोगों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 58,841 हितग्राहियों का सत्यापन भी किया जा चुका है। सत्यापन हेतु 1,545 परिवार अभी शेष हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी स्वीकृत आवास समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश ग्राम पंचायतों के सचिवों को दिए गए हैं तथा शेष सत्यापन कार्य भी 20 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। उमरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल 308 नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 246 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 62 योजनाएं इन दिनों प्रगति पर हैं। इसके साथ ही उमरिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे उमरिया जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आज आप सुनेंगे सतीश दास द्वारा रचित आसामिया गीत ए माटी रे।
1: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
2: जी हाँ।
1: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम।
3: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज फनकार हैं सलीम झनकार और साथी।

रहे, आंखों में नूर दिल में उजाले नहीं रहे, जलवे वही हैं देखने वाले नहीं रहे, और राहों की जहमतों का उन्हें क्या सबूत दूं कि मंजिल मिली तो पांव में छाले नहीं रहे।

इन सदाओं से सरफराज न कर, इन सदाओं से सरफराज न कर, क्योंकि दिल का आलम बहुत नशीबी है और अपना कहकर पुकारने वाले तू भी शायद कोई फरेबी है। क्यों?

कुछ एहसास नहीं है, तुमको कुछ एहसास नहीं है, हैरत तो इस बात की है

0: समझते थे। लफ्ज़े एहसास पे जरा नजर डालिएगा कि तुमको कुछ एहसास नहीं है, क्योंकि समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने। समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने, और चिरागों के जलाने में जला ली उंगलियां हमने। पर तुमको कुछ एहसास नहीं है।
1: तुमको कुछ एहसास।

बेजान परिंदा जो सरे राह पड़ा है और मालूम नहीं कितनी बुलंदी से गिरा है और भीगी हुई हैं उंगलियां खुद अपने लहू में, ये कांच के टुकड़ों के उठाने का सिला है, पर तुमको कुछ एहसास नहीं है।

0: के पूछा हमसे पाँव के छालों ने,
1: हमसे पाँव के छालों ने।
0: हुजूर रस्ते पर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने कि बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने, पर तुमको कुछ एहसास नहीं है।

0: कुछ दिखाई न दे।
1: खुदा मुझको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, और खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई ना दे। रह कर ये सोच रहा हूं कि कौन है ऐसा जादूगर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: संदेश के बाद स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुगम संगीत में। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सलीम झनकार और साथियों की गाई कव्वाली। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का यह अगला नगमा।

0: पहली सी मोहब्बत के समाने नहीं आते।
1: बुलाइए फरमाए।
0: पहली सी मोहब्बत के

पहले सी मोहब्बत के जमाने नहीं आते, और आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, और लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते।

पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। देखते जाइए कैसे है जमाने वाले, देखते जाइए कैसे है जमाने वाले, तापने बैठ गए आग बुझाने वाले। मतलब नजर कर रहा हूं

0: और चेहरा बदल के बच गया, चेहरा बदल के बच गया, ये और बात है।
1: क्या समझते हो उसे अदल सजा ही देगा? क्या समझते हो उसे अदल सजा ही देगा? जान से जाएगा जो शख्स गवाही देगा।
0: चेहरा बदल के बच गया, ये और बात है।

آجی ایسی تو گفتگو میں کوئی بات ہی نہ تھی, یہ کیا ہوا کہ آپ کا

शेरदादा तवज्जो जाएंगे। जब सफर आखिरी हो हमारा, जब सफर आखिरी हो हमारा, या नबी हो त

और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 10:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म सरगम के लिए लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए अमित कुमार की आवाज में फिल्म तेरी कसम का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन साहब।

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म धनवान का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत तैयार किया हृदयनाथ मंगेशकर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए आप सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में फिल्म चलते चलते का ये गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत जतिन ललित।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म ब्लैक मेल का ये गीत। आवाज किशोर कुमार की, राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सुबह के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। तब तक सुनते रहिए ये गीत।

0: गोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम जुड़ा है आपकी फरमाइश से और आप अपनी फरमाइश हमें बताएंगे टेलीफोन नंबर 2660902 के माध्यम से। भोपाल का एसटीडी कोड आप जानते हैं 0755। तो बताइए अपनी फरमाइश और आनंद लीजिए अपनी पसंद के गीतों का। हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनकी फरमाइश। हेलो।
2: हेलो नमस्ते
1: जी। नमस्कार,
2: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहे हूँ।
1: जी खान साहब कैसे हैं?
2: बस बढ़िया है मैडम, एकदम खैरियत में है, बस गर्मी थोड़ी तेज है फिलहाल तो।
1: जी
2: हाँ,
1: अच्छी बात है, खैरियत से होना ही चाहिए। अपन ही यदि ठीक ना हो तो आसपास की चीजें और ज्यादा दिक्कत देने लगती हैं।
2: हाँ सही है।
1: आज के इस कार्यक्रम के आप पहले कॉलर हैं, बताइए कौन से गीत से शुरुआत की जाए कार्यक्रम की।
2: फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।
1: जी
2: इसका गीत है लता जी की आवाज में, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, किस किस को सुनाऊं अपनी प्रेम कहानियां।

0: हेलो
1: नमस्कार दीदी,
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं
1: मैं चित्रकूट धाम की बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, मस्त है। कौन दीदी बोल रही हैं?
0: मैं अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ।
1: जी जी, अमिता जी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार। तो बताइए, कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: झुक झुक गया आसमान तुमसे मिले नजर की मेरी होश उड़ गए।
0: जहाँ तक मेरी याददाश्त है, आप इस गीत की फरमाइश पहले भी कर चुके हैं। अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आई।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार
1: जी, मैं ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह से लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ।
0: जी चंदेल जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया है मैम, आप बताइए आप कैसे?
0: बस हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है, हालचाल पता लगते हैं तो और अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल मैम
0: जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।
0: अच्छा, और गीत के बोल?
1: गीत के बोल मतलब ये टाइटल सॉन्ग सुनना है मैम।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जिला ग्राम पातरपुरी से राहुल ध्रुव बात कर रहे।
0: जी राहुल जी, कैसे हैं?
1: अभी तो ठीक ही है। आप कैसे? मतलब गेहूं वगैरह सब जो मक्का है वो सूख चुका है और काट चुके हैं, दिक्कत नहीं है अभी मतलब पानी से? छुपा
0: बताइए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: रुस्तम का, छुपा
0: छुपा रुस्तम, कौन सा गीत इसका?
1: रुस्तम का, प्यार में दिल तो सब देते हैं, जान तो मैं दे गई।

0: हेलो
1: हेलो जी, मैं अमृता तिवारी बोल रही हूँ रीवा से।
0: जी अमृता जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: बस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या चल रहा था अभी घर का काम काज?
1: जी मैम, वही भोजन।
0: बिल्कुल सही बात है, ये समय भी ऐसा ही होता है। और भोजन एक ऐसी चीज है जो सुबह शाम की तो कम से कम एक व्यस्तता होती ही है, कई बार वो घर में 3 बार की व्यस्तता भी हो जाती है।
1: जी मैम, मैं सुबह ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, उसके बाद भोजन की तैयारी 4 बजे, फिर
0: बिल्कुल
1: पापा जी हार्ट पेशेंट हैं,
0: जी जी जी
1: शुगर पेशेंट, तो उनको बार बार देना पड़ता है
0: हाँ,
1: सुबह।
0: नहीं सही बात है। और बल्कि डॉक्टर्स कहते भी यही हैं कि एक बार में एक साथ पूरा भोजन
1: जी
0: लेने के बजाय यदि हम छोटे छोटे मील्स लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में खाएंगे, तो वो पचने में भी आसानी होगी, शरीर को लगेगा भी, और ज़्यादा हितकारी होगा। पर
1: जी
0: बस
1: मैम,
0: वही है कि सबके अपने पैटर्न होते हैं और
1: जी
0: उसके हिसाब से फिर काम चलता है। तो बताएं कौन सी फरमाइश आपकी पूरी की जा सकती है?
1: जी मैम, मूवी का नाम नहीं बता पाऊंगी।
0: चलिए गीत के बोल बता दीजिए।
1: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, बोले बदल दे
0: बिल्कुल
1: बस, ढंग
0: बिल्कुल
1: बदल दे
0: बिल्कुल।
1: सबके।
0: आसपास कहीं पूजा पाठ चल रहा है?
1: जी, घर में ही।
0: इतनी अच्छी शंख ध्वनि के साथ आपके खूबसूरत से गीत को हम पहुंचाते हैं आप तक। फिल्म राजा और रंक से।

0: हेलो, फोन करें
1: हेलो
0: गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार
1: मैं ग्राम सगरा जिला पन्ना से अंजना प्रजापति बात कर रही हूँ।
0: जी। अंजना, कैसी हैं आप?
1: मैम हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी मैम, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है,
0: बहुत
1: आज
0: दिनों
1: बहुत ही
0: बाद
1: अच्छा लग रहा है।
0: ऐसे ही होता है, बहुत बहुत दिनों में बात हो तो अच्छा लगता है। क्या
1: जी
0: चल रहा
1: मैम,
0: है बाकी?
1: जी मैम मुझे गाना सुनवा दीजिए। मूवी का नाम है विजय पथ, उसमें गीत है राहों में उनसे मुलाकात हो गई।
0: विजय पथ का गीत आप सुनना चाहती हैं और हम पूछ रहे थे कि इन दिनों क्या चल रहा है।
1: मैम इन दिनों कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और कभी कभी बारिश भी होने लगती है, तो मौसम में बहुत परिवर्तन है। घर के काम करते हैं और पढ़ाई भी साथ साथ में करते हैं।
0: अच्छी बात है, दोनों काम जरूरी हैं, करते रहिए। और अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आइए, क्योंकि विजय पथ का गीत हमें पता है आपको बहुत पसंद है, आप कई बार सुन भी चुकी हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी ही पसंद का गीत।
1: ओके मैम, थैंक यू।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी मैं नमस्कार, मैं हूँ राम बाबू मालवी, बोल रहा था कोलार रोड भोपाल से।
0: जी मालवी जी कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो?
0: बस हम भी अच्छे हैं। आपकी
1: जी
0: फरमाइश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी आज सुनना चाहेंगे हम रंग मूवी का, कोई सा भी सुनवा दीजिए आप।
0: रंग मूवी का?
1: हाँ
0: जी, फिर भी क्या पसंद है इस मूवी में, कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है?
1: उसमें गाना वो अच्छा है, तुझे देके मेरी आके, इस प्रकार से गाना है
0: जी
1: वो अच्छा है।
0: बिल्कुल, तो आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: जी। नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: अनिल बामनिया लाभे फिर इंदौर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी कैसे हैं आप अनिल जी?
1: बस बढ़िया है मैडम, आप कैसे हैं?
0: बस हम भी अच्छे हैं।
1: तो आज मुझे एक गीत सुनना है, जनता हवलदार।
0: इसका कौन सा गीत है
1: हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली।
0: अनिल जी? आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।
1: और मैं एक और आपसे निवेदन करना
0: जी
1: चाहूंगा,
0: बताइएगा।
1: आप चिट्ठी के जो प्रोग्राम है मैडम वो अधिक से अधिक शामिल करें, और आपका पत्र प्रोग्राम प्रसारित होता था उसके पुनः शुरू किया जावे।
0: कौन सा प्रोग्राम?
1: आपका पत्र,
0: आपका पत्र, बिल्कुल
1: हाँ पहले आया करता, पहले आता था ये
0: जी। कोविड के पहले तक ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा है, उसके बाद के बदलाव में ये कार्यक्रम स्थगित हो गया था।
1: हाँ।
0: तो आपकी ये सुझाव और आपकी ये फरमाइश पहुंच गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा
1: बिल्कुल
0: यकीनन आप
1: बिल्कुल,
0: तक पहुंचेगा।
1: थैंक यू मैडम।
0: और
1: ओके जी,
0: जो पत्रों पर आधारित कार्यक्रम की बात कर रहे हैं आप फरमाइश की, तो बस उसके लिए इतनी सी ही गुजारिश है कि जितने ज्यादा श्रोता जुड़ेंगे उसमें पत्र लिखने में, उतने ज्यादा पत्र शामिल होंगे। यदि एक ही व्यक्ति 100, 150, 500 पत्र डाल देगा तो पत्रों की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन शामिल होने वाले पत्रों की संख्या नहीं बढ़ पाएगी,
1: हाँ जी जी
0: है ना
1: ये सर, तो आपके ये
0: जी?
1: आपका फरमाइश कार्यक्रम जो आता है उसमें
0: जी
1: तो कई पत्र आते हैं
0: जी जी बिल्कुल
1: और मैं भी भेजता रहता हूँ।
0: बिल्कुल, और शामिल भी होते रहते हैं
1: हाँ, होते रहते हैं
0: जी।
1: इसमें।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेंगे गीत सुने कार्यक्रम। जी
0: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: दीदी दी, नमस्कार, मैं छतरपुर बसावी गेट से राकेश वर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी राकेश वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हैं, गर्मी का मजा ले रहे हैं। जंगल जलेबी का पेड़ लगा हुआ है हमारे गोदाम पर
0: हाँ, तो
1: और
0: बढ़िया
1: उसी पर
0: छाया
1: बैठे
0: होती है।
1: हुए। जी
0: गर्मी का मजा तो हम लेंगे, तभी बारिश की आमद होगी, तो इसलिए उस आनंद को तो
1: जी
0: लेते रहिए इस उम्मीद के साथ कि
1: जी
0: अच्छी
1: दीदी
0: बारिश
1: जी,
0: होगी। तो
1: मैं मुझे ध्यान आ रहा है कि आज शायद अनीता बोल रही हूँ, अमिता जी। जी
0: अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ मैं। जी
1: मुझे
0: जी
1: थोड़े थोड़ा ध्यान, मैं मध्य प्रदेश आकाशवाणी से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ,
0: जी
1: जबकि 1976 से जब से मैंने आकाशवाणी सुनना शुरू की है, मतलब
0: जी
1: रेडियो सुनना शुरू किया है, तब से
0: जी
1: मैं भोपाल से जुड़ा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, ये जुड़ाव आगे भी बरसों बरस बना रहे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे। और अभी आपकी कौन सी पसंद पूरी की जा सकती है ये बताइएगा।
1: पसंद दीदी जी, मौसम के हिसाब से तो गर्मी के हिसाब से गिरफ्तार का आ रहा है, और कबीर रेडियो श्रोता संघ के नाम से हैं हम, तो
0: जी
1: कबीर रेडियो के नाम से है, तो एक गीत आ रहा है 10 नंबरी का।
0: दस
1: अब
0: नंबरी का
1: तीन
0: कौन सा
1: जगह है
0: गीत?
1: और तीन में से एक गीत हमको चुनना है। कहें कबीर सुनो भाई साधु,
0: आपने
1: आप
0: एक तीसरी पसंद की भी बात की, तो वो भी बता दीजिए।
1: तीसरा तीसरा वो है, वो शादी ब्याह चल रहा है ना, तीन तीन ऑप्शन थे हमारे पास।
0: हम जरूर पूरा करेंगे, आप ही इन तीन में से एक चुन लें तो वो आप तक पहुंच जाएगा।
1: सोच रहे हैं कि कबीर कबीर वाला सुना दीजिए 10 नंबरी का, क्योंकि ये गीत
0: बिल्कुल,
1: बहुत कम बचता है।
0: तो ये गीत आप तक पहुंच रहा है, आनंद
1: जी
0: लीजिएगा।
1: नमस्कार दीदी जी।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ हालांकि दो दिन पहले हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आशंकित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टीवी के सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के ऊपर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉ. यादव इस दौरान अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिल सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म नसीब से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब और मुश्तबा। अगले श्रोता हैं महनगर महाराष्ट्र से। श्रोता हैं अभिजीत, सरिता, सिद्धांत और प्रिंस। सुनते हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गीत।

0: किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म डॉन से। गीत लिखा है अनजान ने, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश साबले, शीतल, राजदीप और राशि। अगले श्रोता मलकापुर महाराष्ट्र से हैं, शत्रुघ्न वाल्मीक, नीना जी, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

किशोर कुमार और एनेट पिंटो के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सत्ते पे सत्ता से। ये खूबसूरत गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, गीत को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है दिल्ली शहर से। श्रोता हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा और आकाश। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म कालिया से। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें सनावत से आई है। श्रोता हैं सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और शादाब। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रकीफ़ की स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अभिमान से। गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार SD बर्मन। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में जो गीत सुनना चाहते हैं वो हमारे श्रोता भाटापारा दतरिंगी से हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा और जावेद्य कुमार वर्मा। अगले श्रोता महाराष्ट्र बीड शहर से हैं, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: संगठना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम का 11वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओं, धारावाहिक की 11वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आप पीती का नाट्य रूपांतरण। ये कहानी मानसरोवर भाग 6 प्रेम प्रसून कहानी संग्रह में शामिल है। प्रायः अधिकांश साहित्य सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पाठकगण उनके पास श्रद्धापूर्ण पत्र भेजने लगते हैं। कोई उनकी रचना शैली की प्रशंसा करता है, कोई उनके सद्विचारों पर मोहित हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से ये सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पत्रों को पढ़कर हृदय कितना गदगद हो जाता है, इसे किसी साहित्य प्रेमी से ही पूछना चाहिए।
1: त्रिवेदी जी, ये डाक में किसी उमापति जी का पत्र आया है आपके नाम।
2: किसका? उमापति? हाँ, लाइए लाइए, दीजिए। अच्छा मुनीम जी।
3: हाँ जी।
2: आप लोगों की दृष्टि में मेरी जो रचनाएं साधारण और स्तरहीन है, उनकी प्रशंसा ये कितने अच्छे कवि ने की, जिनकी स्वयं की रचनाएं अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है।
1: जनाब क्या लिखते हैं?
2: अरे ऐसी प्रशंसा की है कि हृदय गदगद हो गया। विस्तार से तो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझसे स्वयं भेंट करना चाहते हैं? लाइए वो जरा कलम दवात उठाइए, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ।
0: पांचवें दिन कवि महोदय का दूसरा पत्र आ पहुंचा। ये पत्र पहले से भी कहीं अधिक मर्मस्पर्शी था। प्यारे भैया, अच्छा तो उनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। आगे लिखते हैं, कृपया अपनी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम पते भी भेजिएगा। मेरी पत्नी पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपकी संतानें कितनी हैं और आपका कोई फोटो भी है, और यदि है तो भेज दीजिए। धन्य है भगवान, अब रमणियां भी मेरे कृत्यों की सराहना करने लगी हैं। ये पहला अवसर है जब मेरी रचनाओं की प्रशंसा किसी महिला ने की है। ये महाशय तो मुझसे खासे प्रभावित है। अजी सुनती हो? अरे मैंने कहा सुन रही हो?
4: आटे में हाथ सने हैं, आ रही हूं।
2: देखिए, ये हमारे एक साहित्य प्रेमी मित्र उमापति का पत्र आया है। देखिए देखिए, ये स्वयं तो हमारी रचनाओं के प्रेमी हैं ही, इनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। और एक आप हैं, आपके पास तो समय ही नहीं हमारी रचनाओं को सुनने के लिए।
5: अरे इस चूल्हे चौके से फुर्सत मिले तभी तो कुछ सुनूं। और अगर मैं आपकी रचनाएं सुनने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा?
2: वो
5: आप ही को मुबारक हो, आपके रचना प्रेमी और उनकी पत्नी।
2: उमापति जी की श्रीमती जी ने मेरे परिवार और वंशावली के बारे में पूछा है। ठीक है, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखूंगा कि क्या याद रखेंगे वो। चलो लिखता हूं। मेरे दादा एक रियासत के मैनेजर थे। हालांकि ये बात मैं जानता हूं कि एक नौकर मात्र थे। मेरे पिता जो दफ्तर में क्लर्क थे, उन्हें मैंने दफ्तर का प्रधान अध्यक्ष लिख दिया है। और काश्तकारी को जमींदारी बनाना तो बड़ी मामूली सी बात थी, सो वो भी मैंने कर दिया है।
0: और इस तरह दो सप्ताह और बीत गए, उमापति का कोई पत्र नहीं आया। अश्वनी का महीना और तीसरा प्रहर था, रामलीला की धूम थी, मित्रों की ताश की बाजी चल रही थी।
3: जी हाँ जनाब, क्या काम है आपको, किससे मिलना है?
6: जी आप लोगों में से त्रिवेदी जी कौन हैं?
2: जी कहिए, मैं ही त्रिवेदी हूँ।
6: जी आपने मुझे पहचाना?
2: नागा ढील टॉल, मुख पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल संवरे हुए, सादी कमीज, श्याम वर्ण, गले में फूलों की माला और पैर में फुल बूट और हाथ में मोटी सी पुस्तक। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इन महाशय को कहीं देखा है या इनसे कभी मिला हूं। जी माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका।
6: जी मैं आपका अदना सा चाहने वाला उमापति नारायण।
2: अरे उमापति नारायण जी, आप यूं अचानक किस तरह?
6: जी चलिए मकान पर चलते हैं, वहीं सब बताऊंगा।
2: अच्छा,
6: मैं आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ बैठक में हैं, पूछता हुआ चला आया।
2: जी जी आइए चलते हैं, तब तक आप पान इलायची लीजिए, मैं बस अभी आया।
7: ये महाशय कौन हैं? आपके जानने वालों में पहले इन्हें कभी देखा नहीं।
2: अरे मेरे नए मित्र हैं, मेरी रचनाओं के प्रशंसक।
7: इनसे जरा होशियार रहिएगा।
2: आपका अनुमान गलत है, आप हमेशा आदमी को उसकी सच धज से परखा करते हैं, पर मनुष्य कपड़ों में नहीं दिल में रहता है।
7: खैर ये रहस्य की बातें तो आप जाने, मैंने तो आपको आगाह कर दिया है।
6: भोजन बहुत स्वादिष्ट था।
2: जी वो बस जल्दी जल्दी में बाजार से मंगवाना पड़ा। और सुनाइए, घर में सब आनंद मंगल तो है ना?
6: जी हाँ सब आनंद मंगल, आपका और आपकी रचनाओं का अक्सर ही घर में जिक्र होता रहता है।
2: जी धन्यवाद। जी आप भी तो कविताएं लिखते हैं ना, कृपया कुछ सुनाइए ना।
6: हाँ,
8: जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। एक दिन आएगा वो फूट जाएगा, सब बेकार है सब यहीं रह जाएगा। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है।
2: वाह वाह उमापति जी, क्या स्वर है, क्या शब्दों का चयन है।
6: जी शुक्रिया शुक्रिया,
2: बहुत सुंदर कविता है, बहुत खूब। अच्छा अब रामलीला का समय हो चला है, चला जाए?
6: जी बिल्कुल,
2: वापिस लौटकर वापिस अपना कविता पाठ सुनते हैं।
6: जी जरूर,
2: आइए।
6: रामलीला का इतना सुंदर मंचन इससे पहले याद नहीं पड़ता मैंने कभी देखा हो।
2: चलिए अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, आइए रात्रि भोज कर ले।
6: जी बिल्कुल।
2: जी हाँ उमापति जी, बताइए अचानक कैसे आना हुआ आपका?
6: भाई साहब मैं अपनी पत्नी को लेने कानपुर जा रहा हूँ,
8: वहीं मेरा मकान भी है और जमींदारी भी,
6: और वहीं ससुराल भी है।
2: जी
6: दरअसल जमींदारी से मुझे घृणा है, मैं साहित्यिक जीवन व्यतीत करने की मंशा रखता हूँ और एक मासिक पत्रिका निकालने का मेरे मन में विचार है। वैसे तो मुझे प्रकाशक एक कविता के 1000 देता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि ये पुस्तिकाएं मैं अपनी ही लागत पर छपवाऊँ। भाई साहब वैसे तो मेरी धर्मपत्नी एक कन्या विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है।
2: अच्छा है। बातचीत में कब आधी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अच्छा उमापति जी शुभरात्रि।
6: शुभरात्रि।
2: अरे उमापति जी सवेरे सवेरे तैयार होकर बैठे, कहीं जाने का विचार है क्या?
6: जी अब आज्ञा दीजिए, लौटते समय इधर से ही जाऊंगा।
2: अच्छा,
6: इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा।
2: अरे नहीं नहीं, कष्ट की क्या बात है, निसंकोच कहिए।
6: मैं कल चला तो प्रातःकाल के 4 बजे थे
2: जी।
6: 2 बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए।
2: अच्छा।
6: बल्कि यूं समझिए कि सारी रात जागना पड़ा।
2: अरे
6: क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी
2: जी।
6: गाड़ी में बैठा तो झपकियां आने लगी और कोट उतार कर रख दिया और लेट गया, तुरंत ही नींद आ गई।
2: अच्छा अच्छा।
6: मुगल सराय में नींद खुली, कोट गायब, नीचे ऊपर देखा, चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं। समझ गया किसी महाशय ने उड़ा दिए, आखिर सोने की सजा मिल ही गई।
9: कोट में 50 रुपए खर्च करने के लिए रखे थे वे भी उसके साथ उड़ गए। अब क्या कहूँ, दरअसल अगर आप मुझे 50 रुपए दे दें तो बात वो है कि पत्नी को मैके से लाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे, और फिर तो आप जानते ही हैं कि ससुराल में सैकड़ों तरह के नेकजोग होते हैं, कदम कदम पर रुपए खर्च करने होते हैं, न खर्च करो तो हंसी का बड़ा डर है। मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा।
2: इसकी बातों ने तो मुझे हसमंजस में डाल दिया है, एक बार पहले भी धोखा खा चुका हूं, कहीं फिर से वही दशा हुई तो। अरे नहीं नहीं नहीं, संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते, ये तो सज्जन पुरुष लगता है, इस समय संकट में पड़े हैं, इस समय ऐसी बातें सोचना मुझे शुभ नहीं देता। अरे अजी सुनती हो? अच्छा उमापति जी, आप यहीं ठहरिए, मैं भी आता हूं। अजी सुनती हो? तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है?
10: क्यों, क्या करोगे?
2: मेरे मित्र जो कलाएं हैं ना, उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है ना, लौटते समय देते जाएंगे।
10: तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं ना, सब तुम्हें ठगने ही आते हैं।
2: वो
10: सभी संकट में पड़े रहते हैं, मेरे पास नहीं है रुपए वुपे।
2: अजी दे दो, बेचारे तैयार खड़े हैं, उनकी गाड़ी छूट जाएगी।
10: तो कह दो इस समय घर में रुपये नहीं है।
2: देखो ये कह देना आसान नहीं है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं दरिद्र ही नहीं मित्रहीन भी हूं, नहीं तो क्या मेरे लिए 50 रुपए का भी इंतजाम नहीं हो सकता? उमापति को कभी विश्वास नहीं आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं है, इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम आपको रुपए नहीं दे सकते, कम से कम अपना पर्दा तो ढका रहेगा ना।
10: ये लो, ये रही संदूक की चाबियां। तुम्हें जितनी बहस करनी आती है ना, उतना ही अगर लोगों को परखना आता तो आज आदमी हो गए होते।
2: अब
10: ले जाओ, दे दो उसे, लेकिन उधार समझकर मत देना, ये समझ लो कि पानी में फेंक दिए।
0: सातवें दिन उमापति अपनी पत्नी और पुत्री सहित पुनः पधारे, उनकी अच्छी आवभगत की गई, स्वागत में 20 रुपए भी दिए गए। त्रिवेदी जी को विश्वास था कि उमापति जी आते ही उनके 50 रुपए धन्यवाद सहित उन्हें लौटा देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सुनो, इन्होंने तो रुपए नहीं दिए जी।
11: तो क्या तुम्हें सचमुच आशा थी
10: कि वो आते ही रुपए हाथ में रख देंगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि फिर पाने की आशा मत करना, यही समझ लो कि किसी मित्र की मदद कर दी, लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो।
2: बड़ी लज्जा का विषय है, इनके आदर सत्कार में क्या कमी छोड़ी हमने। अब तो बिस्तरा बांध कर चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पैसों का कोई जिक्र नहीं, मैं तो बड़ा ही अपमानित सा महसूस कर रहा हूं। तुम ठीक कहती थी, मुझे वाकई आदमी की परख नहीं है।
9: त्रिवेदी जी, चलने का समय हो गया है, लेकिन एक बात मन में है जो आपसे कहना चाह रहा हूं। समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे कहूं। दरअसल वो बात यह है कि और मुझे दुख भी इस बात का है कि मैं इस बार भी आपके रुपए नहीं दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट नहीं हुई क्योंकि वो तहसील वसूल करने के लिए गांव गए हुए थे और मुझे इतना अवकाश नहीं था कि गांव तक जाता। क्या है कि गांव तक रेल का रास्ता नहीं है, सो बैलगाड़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर सीधा ससुराल चला गया और वहां सब रुपए खर्च हो गए। विदाई के रुपए अगर नहीं मिल जाते तो यहां तक आना भी बड़ा मुश्किल था। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपसे कहूं कि वो क्या है कि अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। अगर आप मुझे 25 रुपए और दे देते तो मैं आपको वहां जाते भेज दूंगा, विश्वास कीजिए। इस समय मेरे पास इक्के का किराया भी नहीं है।
2: जी मैं तो आ रहा है कि टका से जवाब दे दूं, पर क्या करूं, इतनी अशिष्टता मुझसे हो नहीं सकेगी। बड़ी मुश्किल से मन मार कर त्रिवेदी जी ने पत्नी से पैसे लिए। पत्नी ने भी बिना किसी नानुकुर किए रुपए दे दिए। त्रिवेदी जी की मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उमापति जब चलने लगे तो त्रिवेदी जी शिष्टाचार के नाते ही सही उन्हें सड़क तक छोड़ने भी नहीं गए। एक हफ्ते के बाद उमापति जी का पत्र आया कि किसी कार्यवश बाहर जा रहे हैं, रुपए लौट कर भेज देंगे। लेकिन इसके बाद ना तो रुपए आए और ना ही कोई खत। त्रिवेदी जी खत और रजिस्ट्री लिख लिख कर थक कर बैठ गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो उनकी धर्मपत्नी ने कहा था वही सच था।
12: इस कपट भरे व्यवहार का मुझ पर बुरा असर पड़ा। मैं इतना उदार नहीं कि अपने ऋण को भूल सकूं। अरे महीनों सिर खपाता हूं, कलम खिसता हूं, तब जाकर कहीं नगद नारायण के दर्शन होते।
13: त्रिवेदी जी, आपसे मिलने कोई युवक आया है, स्वयं को कंपोजिटर बताता है।
12: ठीक है, अंदर भेज दीजिए। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
14: महाशय, मैं बिहार के एक संपन्न परिवार से हूँ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। मित्रों की संगति में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे घर वालों ने किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया। इस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे काम की सख्त आवश्यकता है।
12: ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 15 रुपए मासिक से अधिक नहीं दे सकूंगा और तुम्हें कंपोजिटर का कार्य करना होगा।
14: जी मुझे स्वीकार है।
12: ठीक है। मुनीम जी।
15: जी।
12: ये लड़का आज काम पर नहीं आया, कुछ कहकर गया था क्या आपसे?
13: कल से बुखार बता रहा था, शायद इसी वजह से ना आया हो।
12: भाई बड़ा सलीके वाला लड़का है, अपना काम बखूबी करता है, मुझे तो बहुत पसंद है।
13: देखिए देखिए त्रिवेदी जी, वो चला आ रहा है।
14: नमस्ते सर, माफी चाहता हूँ, आने में देर हुई। दरअसल कल से ही मेरी तबीयत बहुत खराब है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है, शायद आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकूँगा। यदि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं घर चला जाऊं, वहां जाते ही रुपए का प्रबंध करके भेज दूंगा।
12: ये तो वास्तव में बीमार है, मैं इससे भली भांति परिचित हूं और ये भी जानता हूं कि वो यहां रहकर कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकेगा। हाँ, इसे सचमुच सहायता की जरूरत है। आखिर, मगर मुझे शंका है कि कहीं ये भी रुपए हजम ना कर जाए। जब एक विचारशील सुयोग्य पुरुष धोखा दे सकता है तो ऐसे अर्धशिक्षित नवयुवक से कैसे आशा की जाए कि वो अपने वचन का पालन करेगा। भाई, मुझे तुम्हारी दशा पर बेहद दुख है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, बिल्कुल खाली हाथ हूं, मुझे खेद है।
14: आप चाहे तो कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर सकते हैं, मैं आपके रुपए अवश्य भेज दूंगा।
12: यहां तुम्हारी नियत साफ है, लेकिन घर पहुंचकर भी यही नियत रहेगी, इसका क्या प्रमाण है? नियत साफ रहने पर भी मेरे रुपए दे सकोगे या नहीं, ये भी कौन जाने। रुपए तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है। अब देखो, इसमें मुझे संदेह नहीं है, लेकिन खेद है कि मेरे पास आज रुपए नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती हो वो ले सकते हो। ये तो चला गया, लेकिन क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने निर्णय पर स्थिर हूं। अरे, मैं कहां का इतना धनी हूं जो यूं पैसे पानी में फेंकता फिरूं।
13: सुनो बेटा, सुनो, त्रिवेदी जी ने कुछ कहा है क्या?
14: पंडित जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवा के पैसे भी नहीं हैं, मैं घर वापस लौट जाना चाहता हूँ, इसलिए मालिक से कुछ रुपए उधार लेने गया था, लेकिन रुपए नहीं मिल सके।
13: तो फिर क्या करोगे? जितने दिन तुमने काम किया है उससे तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। अरे, पहले तुम ये रोना बंद करो। लो, ये 15 रुपए रखो और तुरंत घर चले जाओ। जाकर सबसे पहले अपना इलाज करवाओ।
14: नीम जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगा, घर पहुंचते ही मैं रुपए वापस भेज दूंगा। नमस्ते।
12: अरे मुनीम जी, ये लड़का क्या कह रहा था? कुछ कहकर गया है क्या?
13: हाँ, वो बता रहा था कि घर जाना चाहता है, मुझसे जो मदद बन पड़ी मैंने कर दी।
12: अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा किया आपने। ये अच्छा ही हुआ। चलो, मुझसे ना सही किसी और से ही सही, मैं भी तो यही चाहता था कि इसकी मदद हो जाए। अब मेरे दिल का बोझ हटा। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता था, लेकिन ये सब मेरे उन कवि मित्र के कपट का परिणाम है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। वरना क्या मेरे पास इस लड़के को देने के लिए 15 रुपए नहीं निकलते? मैं अपनी रचनाओं और आलेखों में बड़े बड़े उपदेश दिया करता था, दया, मनुष्यता, सद्व्यवहार, और मौका पड़ने पर मैं स्वयं ही साफ बच निकला। अरे, मुझसे अच्छे तो ये मुनीम जी निकले, जो मेरी रचनाओं को पढ़ पढ़कर इनका जीवन ही बदल गया है। गुरु गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए। चलो, ये भी अच्छा है, मेरे लेखों का मुझ पर ना सही, दूसरों पर तो प्रभाव पड़ रहा है ना। भले ही चिराग तले अंधेरा सही, पर उसका प्रकाश तो फैल रहा है। और कहीं मुनीम जी को पैसे वापस नहीं मिले तो, जिसकी मुझे पूरी आशा है। तो फिर खूब छकेंगे। महाशय को आड़े हाथों लूंगा।
0: किंतु त्रिवेदी जी की अभिलाषा पूरी ना हो सकी। हां, एक काम उन्होंने अवश्य किया, इस संपूर्ण घटना को आलेख के रूप में एक पत्रिका में छपवा दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चौथे ही दिन उनके दरवाजे पर पोस्टमैन खड़ा था।
15: पोस्टमैन, आपका मनी ऑर्डर है।
12: मनी ऑर्डर? अरे, ये तो उमापति ने भेजा है। अरे, सुनती हो? ये देखो,
2: उमापति जी ने 75 रुपए वापस भेजे और क्षमा लिखा है।
5: अच्छा, इन्हें ले जाकर संभाल कर संदूक में रख दो। तुम इतने लोभी हो, मुझे तो पहली बार मालूम हुआ। कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति किसी कारणवश कर्ज नहीं लौटा पा रहा है तो अवश्य ही वो विवश है। बार बार तकाजा करके उसे लज्जित करना कोई भल मनसाहत नहीं है। अरे, जब तक किसी व्यक्ति का पूरी तरह से नैतिक पतन नहीं हो जाता तब तक वो किसी को धोखा नहीं देता। मैं इन रुपयों को तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक ये पता नहीं चल जाए कि रुपये भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ।
2: उसके बाद उमापति का कोई पत्र नहीं आया जिससे ये पता चले कि रुपए भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ। पर मैं इस समय ऐसी उदार बातें सुनने को तैयार नहीं था। डूबा धन मिल गया, मैं तो इसी में बहुत खुश था। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की जादूगर को सलाम की 11वीं कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और सतीश कक्कड़। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना धारावाहिक जादूगर को सलाम का भाग 11। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टीवीके के सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिलेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल पर दोपहर के 1 बजे है। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज की चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, सखियां सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें के विषय में। जी हाँ बहनों, सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, इसलिए 8 से 12 मई तक ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के रूप में हम मना रहे हैं। बहनों, सड़क सुरक्षा आज के समय में एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। बढ़ती वाहनों की संख्या और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बहनों, सड़क पर वाहन चलाते समय कुछ छोटी छोटी सावधानियां हमें और दूसरों को सुरक्षित रख सकती हैं। सबसे पहले हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना बहुत जरूरी है, यह हमारी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार ही अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण बनती है। मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना बेहद खतरनाक है, इससे ध्यान भटकता है और हादसे की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें नशे की हालत में भी कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। पैदल यात्रियों का सम्मान करें और उन्हें रास्ता दें। सड़क पर धैर्य और संयम बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। बहनों, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हमें यह याद दिलाने का एक अवसर है कि सड़क पर सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर नियमों का पालन करें और जागरूक बने तो हम कई कीमती जिंदगियां बचा सकते हैं। सावधानी ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही जीवन है। रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पहचान बन जाए, हर मोड़ पर जीवन की कीमत याद आए, एक नियम पालन 100 खुशियां बचाए, सड़क पर सावधानी घर तक सही सलामत पहुंचाए। बहनों, सड़क केवल यात्रा का मार्ग नहीं होती, वह विश्वास का रास्ता होती है, जहां हर व्यक्ति यह उम्मीद लेकर निकलता है कि वह सुरक्षित अपने घर लौटेगा। बहनों, सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा संस्कार और हमारा जीवन है। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी हैं। बहनों, प्रश्न यह नहीं है कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, प्रश्न यह है कि क्या हम उन्हें रोकने के लिए जागरूक हैं। बहनों, सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। आपके एक सेकंड की गलती पूरे जीवन की सजा बन सकती है। बहनों, सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों को जानने का नाम नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो सड़क पर चल रहा है। सबके लिए नियम समान रूप से महत्वपूर्ण है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना, सिग्नल का सम्मान करना, ये सभी छोटे छोटे कदम आपके लिए और दूसरों के लिए जीवन बचा सकते हैं। बहनों, सड़क पर दिखावा नहीं, सुरक्षा अपनाओ। स्टंट करना रोमांच नहीं, यह केवल जोखिम और मृत्यु की ओर एक कदम है। तस्वीरों या रील्स के लिए जान को जोखिम में डालना कोई बहादुरी नहीं, वह मूर्खता है। सरकार कानून बनाती है, पुलिस व्यवस्था संभालती है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक बनना हमारा कर्तव्य है। जब हम खुद नियमों का पालन करेंगे, तभी दूसरों से अपेक्षा कर पाएंगे। याद रखिए, एक जिम्मेदार नागरिक ही सुरक्षित समाज की नींव रखता है। सड़क पर हर व्यक्ति किसी का अपना होता है। जो सामने से आ रहा है, वह भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है। सड़क पर संयम, सहानुभूति और अनुशासन अपनाइए। गुस्सा नहीं, समझदारी दिखाइए। हॉर्न नहीं, धैर्य बजाइए। आइए आज हम सब यह संकल्प लें कि हम तेज गति नहीं अपनाएंगे और नियमों का पालन करेंगे।

ममता की छाया सेवा का सार, दर्द भी देती जीवन का उपहार, खामोशी से करती मानवता का काम, नर्से ही हैं सेवा का सच्चा नाम। जी हाँ बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सबसे पुनीत कार्य निभाती नर्स के विषय में। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम प्रतिवर्ष 12 मई को मनाते हैं, उन अनगिनत नर्सों के समर्पण, त्याग और करुणा को नमन करने का दिन है जो दिन रात बिना थके हमारी सेवा में लगी रहती हैं। बहनों, यह दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने न केवल नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाया बल्कि इसे मानवता की सेवा का सर्वोच्च उदाहरण भी स्थापित किया। 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने आधिकारिक रूप से इस दिन को नर्स दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की ताकि दुनिया भर में नर्सों के योगदान को सम्मान दिया जा सके। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। जब कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले सबसे अधिक समय तक जो व्यक्ति उसके साथ रहता है वह नर्स ही होती है। डॉक्टर उपचार की दिशा तय करते हैं लेकिन उस उपचार को सही ढंग से लागू करने का कार्य नर्सें करती हैं। वे न केवल मरीज की देखभाल करती हैं बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा देती हैं। यदि हम कोविड-19 महामारी के आंकड़े देखें तो आप जान सकेंगे कि इस महामारी के दौरान नर्सों की भूमिका ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित थे तब नर्सें अस्पतालों में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रही थीं। कई नर्सों ने अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात काम किया ताकि वे दूसरों की जान बचा सकें। यह केवल एक नौकरी नहीं थी बल्कि यह एक सच्ची सेवा और त्याग का उदाहरण था। नर्सें केवल इंजेक्शन लगाने या दवाइयां देने तक सीमित नहीं होती, वे मरीज की भावनाओं को समझती हैं, उसकी पीड़ा को महसूस करती हैं और उसे आशा देती हैं। जब एक मरीज निराश होता है तब नर्स ही उसे वह विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी मुस्कान, उनका धैर्य और उनकी संवेदनशीलता ही मरीज के लिए सबसे बड़ी दवा बन जाती है। बहनों, इस दिन का महत्व केवल नर्सों को सम्मान देना नहीं है बल्कि यह हमें सिखा

कहता है कि हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि नर्सें भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं और परिवार होते हैं, फिर भी वे अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानती हैं और दूसरों की सेवा में लगी रहती हैं। आज के समय में नर्सिंग केवल सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र बन चुका है। नर्सें अब आधुनिक उपकरणों का संचालन करती हैं, जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं में सहायता करती हैं और स्वास्थ्य अनुसंधानों में भी योगदान देती हैं। इस बदलते समय में नर्सिंग का महत्व और भी बढ़ गया है। बहनों, हमें यह समझना होगा कि यदि हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें नर्सों का सम्मान और सहयोग करना होगा। हमें युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि भविष्य में नर्सों की कमी को दूर किया जा सके। सरकार और समाज दोनों मिलकर नर्सों के कार्यस्थल की स्थिति और सुरक्षा को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि नर्सें केवल अस्पताल की कर्मचारी नहीं बल्कि मानवता की सच्ची सेवक है। बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आज ही के दिन यानी मई माह के दूसरे रविवार को मनाए जा रहे एक बहुत ही खास दिन मदर्स डे के विषय में। जी हाँ बहनों, दुनिया में सबसे कठिन, सबसे पवित्र और सबसे अनमोल है माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि यह एक एहसास है, एक शक्ति है, एक ऐसी छाया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। इस दुनिया में कई रिश्ते बनते हैं लेकिन माँ का रिश्ता जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। वह हमें 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखती है, हमारे हर दर्द को सहती है और बिना किसी शर्त के हमसे प्रेम करती है। माँ की भूमिका इसलिए सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि वह एक साथ कई जिम्मेदारियाँ निभाती है। वह हमारी पहली शिक्षक होती है जो हमें बोलना, चलना और अच्छे संस्कार सिखाती है। वह हमारी रक्षक होती है जो हर मुश्किल से हमें बचाती है। वह हमारी दोस्त भी है जो हमारी हर बात बिना कहे समझ जाती है। माँ अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग कर हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है। वह दिन रात मेहनत करती है लेकिन कभी थकान की शिकायत नहीं करती। उसकी खुशी सिर्फ हमारे चेहरे की मुस्कान में होती है। सच कहूँ तो माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हम केवल उन्हें सम्मान, प्रेम और आदर देकर उनके त्याग का थोड़ा सा मान रख सकते हैं। इस मदर्स डे पर आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपनी माँ का हमेशा सम्मान करेंगे, उनकी बातों का आदर करेंगे और उन्हें गर्व महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ के बिना जीवन अधूरा है और माँ के साथ हर मुश्किल आसान है। बहनों, माँ हमें हर एक बुरी नज़र से भी बचाती है, इसीलिए तो वो माथे पर काजल का टीका लगाती है। और एक दिन जब हम कामयाबी के शिखर को छू लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये हमारी मेहनत नहीं बल्कि माँ की मेहनत है जिसने हमें कदम कदम पर प्रोत्साहित किया और हमारी कामयाबी के लिए उपवास किया। क्या कोई हमारे लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ कर सकता है? शायद नहीं। क्या अंबर, क्या धरती, माँ की तुलना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन बदलते इस परिवेश में हम अपनी उस माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हर वक्त भगवान से हमारी खुशियाँ ही मांगी हैं। जब कभी भी मैं इस वृद्धाश्रम में माताओं को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू झलक आते हैं और यह दिल रोने लगता है और बार बार मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पर। क्या उसने इसीलिए हमें पाला है कि आज हमने उसे उसके घर से ही निकाल दिया? लेकिन बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त हम पर भी आएगा और इतिहास अपने आप को दोहराएगा और उस वक्त हमको अपनी गलती का एहसास कराएगा। लेकिन तब तक ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और हमारे पास सिवाय पश्चाताप की ज्वाला के कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए वक्त रहते हमें अपनी माँ की कद्र करनी चाहिए क्योंकि भगवान का दूसरा रूप होती है माँ। हम अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हों
पर अपनी माँ के लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, वर्ल्ड ल्यूपस डे, जिसे हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है। बहनों, ल्यूपस एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद अपने ही ऊतकों और अंगों पर हमला करने लगती है। यह बीमारी त्वचा, जोड़ों, किडनी, हृदय और मस्तिष्क तक को प्रभावित कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, जिससे इसका सही समय पर निदान करना कठिन हो जाता है। बहनों, विश्व ल्यूपस दिवस का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना, समय पर पहचान और सही इलाज के महत्व को समझना है। ल्यूपस के मरीजों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। समय पर पहचान और उचित इलाज से ल्यूपस को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से मरीज बेहतर जीवन जी सकते हैं। ल्यूपस हो जाने पर खाने पीने का सही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी शरीर में इम्यून सिस्टम और सूजन से जुड़ी होती है। सही डाइट लक्षणों को नियंत्रित करने और शरीर को मजबूत रखने में मदद करती है। सूजन कम करने के लिए खाद्य पदार्थ जैसी हरे पत्तेदार सब्जियां, फल जिनमें सेब, संतरा, पपीता, बेरी, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च खाने से सूजन में आराम मिलता है। अखरोट, अलसी, चिया सीड्स ये दर्द और सूजन दोनों को कम करते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे राजमा, दालें, चना, पनीर, दूध, दही, अंडा यदि आप खाते हैं तो, साबुत अनाज और सुबह और शाम की हल्की धूप, जिससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, ल्यूपस में काफ़ी लाभकारी होती है। बहुत ज़्यादा नमक, जंक फूड, मिठाइयाँ, तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए और जैसा आपके डॉक्टर सलाह दे वैसा ही करें, क्योंकि इसमें सभी मरीजों के लक्षण अलग होते हैं। बहनों, गर्मियों में सत्तू यानी भुने चने का आटा बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह देसी सुपर फूड न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि ऊर्जा भी बनाए रखता है। फाइबर ज़्यादा होने से पेट साफ रहता है और कब्ज नहीं होती। पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज़्यादा खाने की इच्छा कम होती है और आपका वजन कंट्रोल में रहता है। नमक व नींबू के साथ लेने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रहते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। यह धीरे धीरे ऊर्जा रिलीज करता है, जिससे शुगर लेवल स्थिर रहता है। सत्तू के इतने फायदे हैं तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं सत्तू का मीठा शरबत और नमकीन शरबत। मीठे शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4-5 चम्मच सत्तू, शक्कर स्वाद अनुसार जितना मीठा आप लेना चाहें, 1 चुटकी नमक, नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, ठंडा पानी 1 ग्लास। सभी चीज़ों को एक कटोरे में अच्छे से मिला लें। अब इसे 1 ग्लास में सर्व करें, जिसमें कि आप कुछ बर्फ़ के आइस क्यूब्स डाल दें। ठंडा ठंडा पीने पर काफ़ी अच्छा लगता है। बहनों, यह तो था मीठा शरबत। इसी तरह नमकीन शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा ग्लास ठंडा पानी, 2-4 चम्मच सत्तू, बारीक कटी प्याज 2 चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 चम्मच, हरी मिर्च यदि आप बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो इसे अवॉइड करें, और यदि आपको पसंद है तो 1/4 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना जीरा 1/4 चम्मच, काला नमक, सादा नमक स्वाद अनुसार मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। 1 नींबू का रस निचोड़ दें, बर्फ़ डालें और ठंड

ठंडा ठंडा सर्व करें। इसे आप गर्मियों में काम पर जाते समय भी पी सकते हैं। इससे भूख भी नहीं लगेगी और आप पूरे दिन रिफ्रेश भी रहेंगे। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी को दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार है मोहन सिंह कुशवाहा। आइए सुनते हैं इनसे लोकगीत।

लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार मैथिल। सुनते हैं इनसे ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आपकी पहचान आपके विचार, अब हर घर तक पहुँचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
6: हो गया इंतजाम।
7: किसका? गुड्डी की फीस का।
6: दिखा।
7: 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
8: दीदी नौकरी लग गई।
9: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
8: हाँ दी, नया मोबाइल।
9: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
8: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
9: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
8: पर दीप,
9: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
8: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
9: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: के विचार अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत विशाल मिश्रा और राहुल की आवाज़ों में है। फिल्म का नाम आर आर आर।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में गाए धूम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव 1059 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। गेहूं का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 24 आम उत्पादक किसानों को 11,11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को MPPSC, बैंकिंग, SSC, DRDO और फॉरेस्ट सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। IPL क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में होगा, वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में खेला जाएगा। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के शंकरपुनिया क्षेत्र में 35 लाख की लागत से क्षतिग्रस्त रिटर्निंग वॉल का नगर पालिका परिषद ने निर्माण शुरू करवाया है। शिवपुरी कलेक्टर ने ग्राम टोंगरा और राजगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर आशा कार्यकर्ताओं और CHO से सेवाओं की जानकारी ली और रायसेन ने जनगणना 2027 के हाउस लिस्टिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश अब दोपहर समाचार दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
4: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं.
5: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा. सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे. आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले. आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं. ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा. एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
6: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: रविवार के साथ ही मैं आ गई हूँ आपकी अपनी प्रीति दीदी लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में स्वागत है बच्चों आपका। होती है बड़ी प्यारी माँ, जग में सबसे न्यारी माँ, सुख सारे हमको देकर दुख सारे हर लेती माँ, सदा प्यार हमको देती है, ममता का तो सागर है माँ। जी हाँ बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत माँ पर लिखी कविता से क्यों की है। हाँ बच्चों, आज है मातृ दिवस यानी मदर्स डे। तो बच्चों, मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी बहुत उत्साहित ही होंगे। माँ दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे खास और सबसे प्यारा रिश्ता है। उस माँ को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को यह मदर्स डे मनाया जाता है।

0: बच्चों, हर समस्या, हर उलझन माँ के पास आकर खत्म हो जाती है। वो सहज ही हमें सारे उपाय सुझा देती है। तो इतनी प्यारी माँ को आज के दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज देने का मन तो आप सभी ने बना रखा है। हम भी आज कुछ खास करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ आपके बहुत प्यारे प्यारे दोस्त भी हैं। तो आओ जान लेते हैं आज वो क्या विशेष कर रहे हैं अपनी मम्मा के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके दोस्तों से जान लेते हैं कि उनके नाम क्या हैं।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाश्वत तारे है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही चौधरी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंशिका मेरिया है और मैं क्लास 7 की छात्र हूँ।
4: हेलो दोस्तों, मेरा नाम ग्रंथ मेरिया है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ।
5: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश मिश्रा एंड मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ।
0: सभी बच्चों ने अपने नाम बता दिए हैं, तो सभी बच्चे बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं और कुछ न कुछ आज धमाल करेंगे अपनी मम्मा को खुश करने के लिए, उन्हें सरप्राइज देंगे। क्यों शाश्वत, है ना?
1: हाँ दीदी, आज तो मदर्स डे है, आज तो हम अपनी मम्मा को खुश करने की कोशिश करेंगे और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस तैयार करेंगे।
0: क्या बात है, सरप्राइजेस तैयार करेंगे, तो क्या क्या चीज सोच रखी है आपने?
1: मैं मम्मी के लिए केक बनाऊंगा, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड बना के दूंगा और बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। दीदी, ये तो आपको पता ही है कि भगवान हर समय हमारे साथ नहीं आ सकते, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया। हर इंसान की प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है और मेरी भी प्रथम गुरु मेरी माँ ही है। दीदी, तो क्या मैं आपको एक प्यारी सी कविता मेरी माँ के ऊपर सुना सकता हूँ?
0: क्यों नहीं शाश्वत, तुमने इतनी अच्छी बात कही कि जहाँ पर भगवान नहीं होते हैं वहाँ पर माँ होती है, हर मुसीबत को दूर करने के लिए, आपसे बहुत सारा प्यार करने के लिए। तो अपनी माँ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहते हैं, तो सुनाइए।
1: माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला, मेरी मम्मी बड़ी प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली, सुबह सवेरे मुझे जगाती, कृष्णा कहकर मुझे जगाती, जल्दी से तैयार में होता, उसके कारण स्कूल जा पाता, माँ और माँ का प्यार निराला, पर मैं करता गड़बड़ घोटाला, जब मैं करता कोई गलती, समझाने की कोशिश करती, लुटाती मुझ पर अधिक प्यार, करती मुझसे अधिक दुरार, मुझ पर गुस्सा जब है आता, 2 में उड़ भी जाता, मेरी मम्मी मेरी जान, रखती मेरा पूरा ध्यान, माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला।
0: वाह शाश्वत, तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई अपने माँ के ऊपर।
1: दीदी, मुझे एक कविता और आती है, मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ।
0: चलिए सुनाइए।
1: मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ, प्यार से सुबह मुझे जगाती, मीठा दूध पिलाती है, बना के मुझे सुंदर कपड़े, स्कूल छोड़ के आती है, अच्छा अच्छा खाना बनाती, अपने हाथ से मुझे खिलाती। मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ, दुनिया से है प्यारी माँ,
0: दुनिया से है प्यारी माँ और दुनिया से है न्यारी माँ। बहुत ही प्यारी सुंदर कविता शाश्वत आपने सुनाई। अब मुझे वंशिका बताएगी कि वंशिका ने क्या तैयारियाँ करी है मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए।
3: दीदी, आज मैंने सुबह उठ के मेरी मम्मा को फूलों का गुलदस्ता बना के गिफ्ट किया।
0: अच्छी बात बताई कि तुमने अपनी मम्मा को सुबह उठते ही फ्लावर का एक बुके गिफ्ट करा। और क्या करना चाहती हो अपनी मम्मा के लिए?
3: आज मैं अपनी मम्मा को वाटरमेलन का जूस बना के दूंगी, जिससे मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हो जाएगी।
0: आपकी मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी, तो आप अपने दोस्तों को बताएंगी कि कैसे आप वाटरमेलन का जूस बनाएंगी?
3: हाँ दीदी, पर पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वाटरमेलन होता है वो बहुत फायदेमंद होता है गर्मियों के लिए। तरबूज में सबसे ज्यादा लाइकोपाइन पाया जाता है, लाइकोपाइन से फल और सब्जियां लाल रंग के दिखाई देते हैं। तरबूज खाने से दिमाग रिलैक्स रहता है, विटामिन की ज्यादा मात्रा होने के कारण ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी रिलैक्स करता है। अब मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी वो कैसे वाटरमेलन का जूस बना सकते हैं। सबसे पहले तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, उसके बाद मिक्सर में किसी बड़े की मदद से तरबूज के साथ चीनी और 2-3 पुदीने की पत्तियां डालकर पीस लीजिए। इसके बाद छन्नी या पतले कपड़े की मदद से इसे एक गिलास में छान लीजिए। अब एक पिंच काला नमक और आधा नींबू का रस मिलाकर पुदीने की पत्तियों से सजाकर अपनी मम्मा को सॉल्व कीजिए, देखना आपकी मम्मा भी बहुत हैप्पी हो जाएंगी।
0: हम भी बहुत खुश हो गए हैं वंशिका, तुमने इतनी अच्छी रेसिपी अपनी मम्मा के लिए बनाने का प्लान करा है।
3: दीदी बातें तो बहुत हो गई है, पर क्यों ना अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: बहुत अच्छी बात है वंशिका, मम्मा के ऊपर क्यों ना एक गीत सुने।
3: हाँ दीदी।

0: दीदी मेरी कविता का शीर्षक है माँ की ममता माँ का प्यार। माँ की ममता माँ का प्यार झूठा है सारा संसार। लोरी गाती पहले खाना हमें खिलाती करती पल पल हमें दुलार। माँ की ममता माँ का प्यार माँ की आँखों के तारे हम घर के राज दुलारे हम। मीठे स्वर में रही पुकार माँ की ममता माँ का प्यार। दूर नहीं है रहने देती आंसू नहीं है बहने देती करे खिलौनों की भरमार। माँ की ममता माँ का प्यार माँ की ममता माँ का प्यार।
1: अरे वाह सूर्यांश तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। शाश्वत तुम भी तो कुछ बोलने वाले थे ना?
2: हाँ वंशिका मैं भी कुछ लेकर आया हूँ पर उसमें कुछ बात है और तुम ही बताओ कि उसमें क्या बात है।
1: मैं बिल्कुल कविता सुन के बताऊंगी कि उसमें क्या बात है।
2: मम्मी कहे नहाना है पानी मगर बचाना है ये भी कोई बात हुई सोच सोच कर रात हुई। खाना रोज बनाना है पानी मगर बचाना है अजब गजब मम्मी का रूल। हर बातों को देती तूल पोछा रोज लगाना है पानी मगर बचाना है। मम्मी का निर्देश करा लगे टॉर्च और बहुत बड़ा कपड़े को चमकाना है पानी मगर बचाना है।
3: हाँ शाश्वत मैं समझ चुकी हूँ कि इस कविता में पानी बचाने का संदेश है।
2: बहुत अच्छी बात कही पीहू तुमने तुम्हें मेरी कविता अच्छी लगी।
3: हाँ शाश्वत। हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है पीहू और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: पीहू तुम्हें तो पता ही है कि आज मदर्स डे है तो तुम अपनी मम्मा को कौन सा सरप्राइज देने वाली हो?
3: हाँ शाश्वत आज मैंने अपनी मम्मी के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी है और मैं उनको एक भी काम करने नहीं दूंगी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा कहते कि घर में जो पेट्स होते हैं उन्हें गर्मियों के समय बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए। तो दोस्तों तेज गर्मी में डॉगीज को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतें होने लगती है उसके लिए उनकी डाइट पर भी बहुत असर पड़ता है। ऐसे में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी है कि गर्मियों के दौरान वे भरपूर खाएं ताकि उन्हें सफिशिएंट एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलती रहे। बिल्लियों के लिए शेड बनाएं या उनके सोने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स रख सकते हैं। गर्मी से बचाने के लिए उन्हें गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। तेज गर्मी में उन्हें कूलर या एसी वाले कमरे में रखें। एक्वेरियम में रखी गई मछलियों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी है कि टैंक का पानी रोज बदला जाए। पानी बदलने का सबसे अच्छा समय होता है शाम का।
2: अरे वाह पीहू तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी पेट केयर के ऊपर कि हमें अपने पेट्स का ध्यान कैसे रखना है इन गर्मियों में।
3: हाँ शाश्वत अब हमने बहुत सारी बातें कर ली क्यों ना अब हम अपने दोस्तों के साथ गीत सुन लिया जाए।
2: हाँ पीहू चलो एक गीत सुनते हैं।

0: दीदी गीत तो हमने सुन लिया, पर अब शाश्वत हमारे बीच एक रोचक जानकारी लेकर आया है, तो चलिए हम सब सुनते हैं।
1: बिल्कुल आरुही, गीत हमने सुनवा दिया है, तो अब शाश्वत जो रोचक जानकारी लेकर आया है हम सभी मिलकर सुनते हैं।
2: दोस्तों, मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में माँ के प्रति प्यार और सम्मान के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मदर्स डे विश्व में अलग अलग तरह से भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इटली में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ ला फेस्टा डेला मम्मा कहकर माँ को विश किया जाता है। इसका मतलब होता है हैप्पी मदर्स डे मम्मा, ऐसा कहा जाता है। ला फेस्टा डेला मम्मा माँ के आराम का दिन होता है। सर्बिया में मदर्स डे दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यहाँ लगातार 3 हफ्तों तक हर रविवार पहले चिल्ड्रंस डे, फिर फादर्स डे और अंत में मदर्स डे मनाते हैं। दोस्तों, जापान में मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यहाँ इसे हाहा नोही कहा जाता है। माताओं को शक्ति का प्रतीक मानकर उनका सम्मान किया जाता है। बच्चे स्कूलों में और घर पर अपने माँ के चित्र बनाते हैं, घरेलू कामों में उनका हाथ बटाते हैं और खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं। फ्रांस, दोस्तों फ्रांस में मई के अंतिम सप्ताह या जून के शुरुआती सप्ताह में यहाँ फैट डेस मैरिस नाम से मातृ दिवस उत्सव मनाया जाता है। यहाँ मदर्स डे के दिन माँ आराम करती है और उस दिन उनके बच्चे ही उनका सारा काम करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा मदर्स डे कितनी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है।
1: बिल्कुल, आपके दोस्तों को तो पता चल गया और हमें भी पता चल गया है कि मदर्स डे कितने तरीकों से और विश्व में कहां कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है।
2: अब क्यों ना दीदी एक गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक गीत सुन लेते हैं सभी के साथ।

0: और अब हमारे साथ ग्रंथ है, बहुत ही प्यारा है ग्रंथ। ग्रंथ हमें बताओ कि इन गर्मी की छुट्टियों को आप कैसे एंजॉय कर रहे हो?
1: दीदी, इन गर्मियों की छुट्टी में मामा घर जाऊंगा, स्विमिंग सीखूंगा और डांस करूंगा।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप मामा के घर जाएंगे और डांस सीखेंगे, स्विमिंग करेंगे। और क्या करने वाले हैं आप?
1: मेरी मम्मा कहती है कि शाम को साइकिल चलाना चाहिए, इसीलिए मैं शाम को साइकिल चलाता हूँ कि दिन में तो बहुत धूप होती है। और मेरी मम्मा कहती है कि धूप में नहीं जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहती है आपकी मम्मा, क्योंकि आपकी मम्मा चाहती है कि आपकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि धूप बहुत तेज होने से आपको लू भी लग सकती है ना
1: दीदी।
0: और अब आरोही हमें कुछ बताना चाहती है।
2: दीदी, तो आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज मैं मेरी मम्मा को पेपर डॉल गिफ्ट करने वाली हूँ।
0: आपने कहा कि आप पेपर डॉल गिफ्ट करेंगी, तो आपने कहाँ से बनाना सीखा?
2: अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में जाती हूँ और वहाँ से मैंने पेपर डॉल बनाना सीखा। तो आज मैं मदर्स डे सेलिब्रेट करूँगी, मेरे पापा के साथ मैंने सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है और मैंने खाने की बहुत सारी डिशेस बनाई हैं और एक प्यारा सा केक बनाया है। शाम को हम सब लोग मम्मा को सरप्राइज देंगे।
0: क्या बात है, मम्मा को सरप्राइज पार्टी देने वाली है और सारी प्लानिंग हो चुकी है ना?
2: हाँ दीदी।
3: दीदी, आज तो हमें बहुत मजा आया आपके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करने में।
0: बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत मजा आ रहा है कि इतने प्यारे दोस्तों के साथ हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

0: कोई नहीं।
1: माँ के बराबर कोई नहीं। वाकई में बच्चों, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ होती है और वो हमें इतना प्यार करती है कि हमारी सारी गलतियों को माफ कर देती है ना? तो आप सभी बच्चे आज खुश रहें और बहुत अच्छे से एंजॉय करें अपनी मम्मा के साथ। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे।
2: सभी दोस्तों को हैप्पी मदर्स डे।
1: तो प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार ऐसे ही प्यारे बच्चों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपनी प्रीति दीदी को दे अनुमति। बच्चों, जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। श्री मोदी ने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच होंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, वहीं दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 पर और शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिसमें 7:30 से 8:00 के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा जायद उद्यानिकी फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल।

कार्यक्रम आकाशवाणी छिंदवाड़ा की प्रस्तुति रहेगा। विषय रहेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे रात 8:30 बजे और रात 9:30 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर पुनः सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाजपा के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11

तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आईपीएल में आज का पहला मुकाबला

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा गर्मियों में रखें स्वास्थ्य की देखभाल। इसके अलावा क्रम जीवनालोक में आज का विषय है खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल जरूरी है। दोस्तों, साथ ही आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। साथियों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को कम करना है। हर वर्ष यह सप्ताह विभिन्न विषयों के साथ मनाया जाता है ताकि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पैदल यात्री हो, चालक हो या साइकिल सवार, सभी को सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथियों, आज के समय में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं, जिनमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में इस सप्ताह का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, सड़क सुरक्षा का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदार नागरिक होने का संकेत भी है। अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही, तेज गति, नशे में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने के कारण होती है। यदि लोग थोड़ी सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें तो इन दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे जागरूकता अभियान, रैलियां, कार्यशालाएं, स्कूलों में कार्यक्रम। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, गति सीमा का पालन करने और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन भी सड़क सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर देते हैं। भारत जैसे देश में जहां सड़क परिवहन बहुत अधिक उपयोगी है, सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं, जिनका मुख्य कारण नियमों की अनदेखी और जागरूकता की कमी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे अभियान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, युवा वर्ग इस अभियान में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। वे न केवल खुद नियमों का पालन करें बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। स्कूल और कॉलेज सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं ताकि बच्चों में शुरू से ही सही आदतें विकसित हो सकें। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें और नियमों का पालन करें तो हम एक सुरक्षित और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह हमें यही संदेश देता है कि सुरक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस प्रकार सड़क सुरक्षा सप्ताह न केवल एक अभियान है, बल्कि यह जीवन को बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे दूसरे विषय गर्मियों में रखे स्वास्थ्य की देखभाल पर चर्चा करने का। दोस्तों गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में बदलाव करके हम इस मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले गर्मियों में पानी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। शरीर से पसीने के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों का रस जैसे तरल पदार्थ भी शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। दोस्तों गर्मियों में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तला भुना मसालेदार भोजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इसके बजाय हल्का सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, सलाद का सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। साथ ही भोजन समय पर करना और अधिक देर तक भूखे न रहना भी जरूरी है। दोस्तों इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक होता है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू, हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो एक गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय में खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी है तो सिर को ढककर रखें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने और धूप का चश्मा या छाते का प्रयोग करें। इससे शरीर को धूप के

प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों, साथ ही स्वच्छता का ध्यान भी गर्मियों में बहुत जरूरी है। इस मौसम में बैक्टीरिया वायरस तेजी से फैलते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, हाथों को बार बार धोना चाहिए। बाहर का खुला और अस्वच्छ भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, गर्मियों में पर्याप्त नींद और आराम भी जरूरी है। अधिक गर्मी होने के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। साथ ही हल्का व्यायाम और योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के कारण चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहें, सकारात्मक सोच रखें और ठंडी जगहों पर समय बिताएं। संगीत सुनें, किताबें पढ़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से संभव है। यदि हम पर्याप्त पानी पिए, संतुलित आहार लें, धूप से बचाव करें, स्वच्छता का पालन करें, तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। साथियों, आइए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल होना जरूरी है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य के समग्र विकास के लिए खेलकूद और पढ़ाई दोनों का समान महत्व है। केवल पढ़ाई करने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रह जाता है। वहीं केवल खेलकूद पर ध्यान देने से शिक्षा का अभाव रह जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। दोस्तों पढ़ाई का महत्व समझना जरूरी है। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, सही और गलत में अंतर करना सिखाती है और जीवन में सफल बनने का मार्ग दिखाती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में अच्छी शिक्षा ही एक मजबूत भविष्य की नींव रखती है। इसलिए छात्रों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खेलों का भी उतना ही महत्व है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। यह हमें अनुशासन, टीमवर्क और नेतृत्व जैसे गुण सिखाता है। खेल खेलने से मानसिक तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। जो छात्र नियमित रूप से खेलते हैं वे अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं जिससे उनकी पढ़ाई में भी सुधार होता है। यदि कोई छात्र केवल पढ़ाई करता है और खेलकूद से दूर रहता है तो वह जल्दी थकान महसूस करता है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वही जो छात्र केवल खेलकूद में रुचि रखते हैं और पढ़ाई को नजरअंदाज करते हैं वे भविष्य में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए दोस्तों दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल बनाने के लिए समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपने दिनचर्या में पढ़ाई और खेल दोनों के लिए समय निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि दिन में कुछ समय पढ़ाई के लिए और कुछ समय खेलकूद के लिए निश्चित किया जाना चाहिए। इससे ना तो पढ़ाई प्रभावित होगी और ना ही खेलकूद। दोस्तों आज के समय में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां खिलाड़ी और विद्यार्थी दोनों ही क्षेत्रों में सफलता छात्र प्राप्त कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सही योजना और मेहनत की जाए तो दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि खेलकूद और पढ़ाई दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बीच संतुलन बनाकर ही एक स्वस्थ, सफल और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। इसलिए हर छात्र को चाहिए कि वह अपने समय का सही उपयोग करे और खेलकूद और पढ़ाई दोनों को समान महत्व दे।

0: अभी युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया, योगदान शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में
1: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए आजाद फिल्म का गीत। अरिजीत सिंह और हंसिका पारीक ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अमित

धूमधाम। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। विशाल ददलानी ने इस गीत को गाया है। सिद्धांत कौशल की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है क्लिंटन सेरेजो और बैंकाक।

श्रोता उस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवा रहे हैं छावा फिल्म का गीत हीरल वेरदिया और एआर रहमान के स्वरों में। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है एआर रहमान।

कार्यक्रम का आखिरी गीत धुरंधर फिल्म से, शाश्वत सचदेव, शहजाद अली और शुभदीप की आवाज़ें, इरशाद कामिल और साहिर की लुधियानवी की शब्द रचना है, संगीतकार हैं शाश्वत सचदेव और

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
4: DD डायरेक्ट,
3: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
4: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
3: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
4: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
3: आज ही करें कनेक्ट
4: दूरदर्शन की DTS सेवा, DD डायरेक्ट।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: समाप्त हुआ, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुँचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
4: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाजपा के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन और महापूजा की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में श्री चौहान ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी और आईपीएल क्रिकेट में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है फिल्म संगीत के लिए, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। अनिल पांडे के लिखे गीत को संगीत दिया है संदेश शांडिल्य।

जुबिन नौटियाल और विवेक हरिहरन की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फतेह फिल्म का गीत। गीतकार मनदीप खुराना और संगीतकार विवेक हरिहरन।

मिस्टर नटवरलाल, इस फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं राजेश।

अगला गीत सुहाग फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह और ने इस गीत को गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत दिया है और गीत लिखा है आनंद।

क्षमा कीजिए श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं कुर्बान फिल्म से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: अमित त्रिवेदी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
0: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
3: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
4: मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना

0: आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण के।

पहले आपको बता दें, आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर हम सुनवाएंगे कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान छिंदवाड़ा केंद्र का होगा। आपकी फरमाइश, कार्यक्रम का समय है 9:30।

10 बजे सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में विद्वान श्री डी श्रीनिवास का वीणा वादन। ये कार्यक्रम दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आप सुनेंगे 7:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इस कार्यक्रम में आज विषय है जायद उद्यान की फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। ये थे आज के शेष

और अब एक नजर कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर होगा सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। 9:15 पर लोक संगीत में सुनिए राधेश्याम विश्वकर्मा के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। उर्दू कार्यक्रम आयना में 9:30 पर सुनेंगे मिर्जा मुमताज बेग की तकरीर सर सैयद अहमद खां के अदबी कारनामे। इसके अलावा सुनेंगे अयाज कमर का कलाम। जिले की चिट्ठी प्रसारित करेंगे 10:00। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोदवादन हम आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। राग है भैरवी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है 12:00, दोपहर 2:30 और रात्रि 10:00। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनिए जादूगर को सलाम धारावाहिक की 12वीं कड़ी। 1:00 सुनिए स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम योगदान भोपाल केंद्र का। लोक संगीत में 1:30 पर सुनेंगे पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। सुगम संगीत में 1:45 पर कल हम आपको सुनवाएंगे प्राची कोकण ठानकर के गाए गीत और

0: भजन। कल शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। योगदान भोपाल केंद्र का होगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए 6:00। 6:40 पर होगा समसामयिक विषय पर केंद्रित कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन का समय रहेगा 6:45। 8:00 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। पब्लिक स्पीक का समय रहेगा 9:30। ये कार्यक्रम दिल्ली से रिले होगा। 10:30 पर राग रजनी में कल सुनिए पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद वादन, राग होगा कामोद। कल शाम 7:21 पर भोपाल केंद्र से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण है क्रम लोक रंग। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: पापा, लाइए 3,000।
5: क्यों भाई?
4: मेरी पॉकेट मनी।
5: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
4: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
5: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
4: अपना मोबाइल लाओ,
5: ले ले।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृहमंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह संभव कर दिखाया है कि इस योजना से बनी सड़कें गांवों की जीवन धारा बन चुकी हैं।
2: प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें थी, 5000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार और बाद के भी 3 पुरस्कार मिले।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश का कोई भी गांव पक्की सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 261 करोड़ की लागत की नई सड़कों की सौगात मिली है।
2: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यदि विदिशा संसदीय क्षेत्र में बनेगी, 1000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीना के अंदर अंदर हो गई है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में 1059 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास एवं 130 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगा और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करेगा।
4: गुना क्षेत्र में सीमेंट प्लांट जो 4 मिलियन टन का लगने जा रहा है, इसके आधार पर नए अवसर और नए रोजगार की क्षमताएं पैदा होंगी क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश अब औद्योगिकरण के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, जिसका लाभ सदियों तक क्षेत्र की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी।
0: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सतना में मातृ दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह में सहभागिता की। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं कल रतलाम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय ITI हरदा में एक दिवसीय रोजगार स्वरोजगार मेले युवा संगम का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही गेट पर स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ आज किया गया। ओंकारेश्वर के घाटों पर सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले नाविकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज आगरमालवा के सुसनेर में कंठाल नदी से जलकुंभी, कचरा और गंदगी की सफाई की गई। शिवपुरी कलेक्टर ने सभी सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला के रामनगर में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और नर्मदापुरम के माखन नगर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनबे बारे सभी भैया बहनन को रजनी बहन की राम राम। और भैया अपन देख ही रहे हैं कि गर्मी को टाइम चल रहा हुआ है ना। और देखो भैया, अपन को गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य की देखभाल अच्छे से करना है। कहे कि भैया अपन देखा तो लू लपट चला थे तो काहे के नेक में बीमार हो जाते हैं ना। तो भैया जी बात उनको ध्यान रखना है और अपन को भैया अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। और देखो भैया, अपन चर्चा करने जा रहे हैं समग्र विकास का आधार शिक्षा। तो भैया समग्र शिक्षा एक एकीकृत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा जामे प्री स्कूल से कक्षा 12 तक अच्छी शिक्षा मिल सके। यानी कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान या परीक्षा पास करवे को साधन नहीं है, बल्कि भैया बहनों व्यक्ति के शारीरिक मानसिक भावनात्मक सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की नींव है जो भैया रो पूरे रूप से विकास करत है। हमा कहवे को मतलब जो है भैया कि शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनावे को जो अर्थ है कि बच्चा के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान देना होते। यानी कि पढ़ाई के संगे संगे भैया स्वस्थ भी रहे बच्चा, है ना, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि सब चीज़न पे ध्यान देना है। जो नहीं कि बस भैया बस पढ़ाई अकेली करे, तो सबसे ज़रूरी बात जो है कि भैया बच्चन के संपूर्ण कल्याण को सुनिश्चित करना होते हैं, जैसे बच्चा स्वस्थ भी रह सके और तभी तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा होगा। अगर भैया कोनो तरह से बच्चा कमज़ोर है, बार बार बीमार हो जाते, तो पढ़ाई में कैसे मन लगे। तभी तो भैया बच्चा को स्वस्थ और सुरक्षित रहना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ से वो कछु सीख सकत है। और भैया बिन के स्वास्थ्य को भैया विशेष ध्यान रखना चाहे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को बराबर पालन पोषण करना है, उनके भैया अच्छे से ध्यान करना है। तो भैया जे वातन को अपन को विशेष ध्यान रखना है। तो भैया जे बात पे सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत करी है 2018 में, जहाँ में व्यापक दृष्टिकोण से पूर्व विद्यालय से लेकर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में देखा थे। और एकीकृत योजना से भैया जहाँ में 3 पूर्व योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा TE को विलय है। तो भैया बहनों समग्र विकास में शिक्षा से व्यक्तित्व विकास से शिक्षा आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति को बढ़ावे मिला थे। यानी भैया पे जीवन को अच्छा बनाऊ थे, आगे बढ़वे में मदद मिला थे कि का सही है का गलत है, और भैया पढ़ लिख जाएंगे तो कछु ना कछु रोजगारी कर लेंगे, है ना। और भैया जीवन में नई चीज़ों को सीखने को मिला थे छात्रों को, जिम्मेदारी और भैया तर्कशील और सीजन जीवन की चुनौतियों को सामना करवे के लाने तैयार रहते। और संगी सबन को समान अवसर सुई मिला थे, चाहे वो बेटा हो या बेटी। और भैया अपन दिख ही रहे हैं आज के समय में बेटा बेटी कदम से कदम मिला के भैया काम कर रहे हैं, चाहे वो कौन क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में दोनों बराबर काम कर रहे हैं और अपने राष्ट्र भारत को भैया नाम रोशन कर रहे हैं, माता पिता को नाम रोशन कर रहे हैं। तो भैया अपन को बिल्कुल अंतर नहीं करना है, दोनों को बराबर अधिकार देना है। और भैया देखो सरकार भी इतनी योजनाएँ चला के अपने बच्चन को इतनी सहायता दे रही है पढ़वे लिखवे की, और जो और भी चीज़ें हैं मैंने भी सीखवे की, तो जा से कहा भैया समग्र शिक्षा मिल सके और भैया अपने भविष्य को भी अच्छो बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं और भैया आर्थिक स्तर को भी अच्छो कर सकते हैं अपने पैरों पे खड़े होकर। और भैया समय के संग ही तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान डिजिटल पहल के माध्यम से आधुनिक युग के कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा सुई मिलत है। यानी भैया आज के ज़माने में जो डिजिटल शिक्षा जो भी भैया व्यवसाय है वो भी अच्छे सीखने में मिलत है। तो भैया अपने मुड़ी मुड़न को जरूर पढ़ाएं और भैया उनको पालन पोषण बराबर करें। तो भैया जी तो अपन ने समग्र शिक्षा को विकास आधार शिक्षा पे चर्चा करी। और भैया अपनी चर्चा को देवते इतना विराम सुना थे जी।

0: ने खा।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: तो भैया अब अपन ने जो संदेश सुनो, और देखो भैया अब अपन चर्चा कर रहे थे शिक्षा की, तो भैया शिक्षा से जुड़ो कहानी भैया जी एक लोकगीत भी सुनो जाए, तो जाएगा भाव है राजू पटेल और स...

0: तो भैया आप अपन सुन रहे थे राजू पटेल और साथी को गावा जे लोकगीत। और जे लोकगीत हमें भैया बहन को जरूर पसंद आओगे। हाँ भैया पर बच्चन को जरूर पढ़ाना है और बिना पढ़ाई से बिल्कुल वंचित नहीं रखना है। और देखो भैया बहनों अपन खेती किसानी तो करते ही हैं और संग ही कछु भैया पर सहायक व्यवसाय से करते रहते हैं, जैसे कि भैया पशुपालन करते हैं और भैया इनसे मिलने वाले दूध से दूध को बेचाते हैं, वहाँ से बनी चीज़ों को भी, है ना। और भैया अपन बकरी पालन भी करते हैं, जैसे भैया का है आर्थिक स्तर बहुत ठीक ठाक चलत रहते हैं। तो भैया जय कड़ी में और आउ थे भैया कुकुट पालन। हाँ भैया, तो भैया बहनों हम आपको जय विषय पे भेंट वार्ता सुनवाने जा रहे हैं, कुकुट पालन, आधुनिक तकनीक से कुकुट पालन। और भैया जय विषय पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता और इनसे बता रहे हैं श्री SS चौधरी। तो भैया सुनाते हैं जय भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों को साल भर आमदनी मिलती रहे इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम खेती के साथ साथ सहायक व्यवसाय के रूप में पशुपालन, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन जैसे व्यवसाय भी करते रहें। तो इससे क्या है कि जैसा खेती को कहते हैं कि मानसून का जुआ है, अगर मौसम की विपरीत परिस्थितियां भी यदि बन जाती हैं तो हमें इन व्यवसायों से हमें आमदनी होती रहती है। तो कुक्कुट पालन व्यवसाय यदि किसान भाई करना चाहें तो इसके लिए क्या क्या तकनीक उनको अपनानी पड़ेगी अधिक लाभ के लिए, तो इसी संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हैं डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता। तो गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार आपको।
2: जी नमस्कार सभी को।
1: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कुक्कुट पालन व्यवसाय क्या है और ये लाभदायक क्यों है।
2: जी कुक्कुट पालन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कुक्कुट पालन और मुर्गी पालन भारत के परिप्रेक्ष्य में ये एक ही शब्द माने जाते हैं, जबकि विदेशों में बात करें तो जो कुक्कुट पालन है उसके अंदर मुर्गी पालन, उसके अंदर कबूतर, बतख, बटेर, इन सभी को माना जाता है कुक्कुट पालन में। भारत में चूंकि ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है इसीलिए भारत में मुर्गी पालन को ही कुक्कुट पालन माना जाता है या कहा जाता है। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है।
1: कुक्कुट पालन व्यवसाय से आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये लाभदायक कैसे है किसानों के लिए?
2: कुक्कुट पालन जो और जो मुर्गी पालन भारत के परिप्रेक्ष्य में या एक ही बात है, दोनों को एक जैसा कहा जा सकता है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो किसान भाई हैं वो दोनों तरह के काम करते हैं, खेती भी करते हैं और साथ में पशुपालन भी यदि वो करें तो उनको बहुत फायदा होगा। मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन बहुत कम पैसे लगाकर और काफ़ी अच्छा मुनाफा इसके अंदर, कई गुना मुनाफा इसके अंदर मिलता है और बहुत ज़्यादा रखरखाव या बहुत ज़्यादा पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती ऐसी चीज़ों के अंदर, और इसके जो मुनाफे हैं वो कई गुना हैं। तो यदि मुर्गी पालन में अपन किसान भाइयों ने यदि मुर्गियों की जो मृत्यु दर है उसको रोक लिया और बाजार भाव उनको यदि अच्छा मिल गया, तो यदि ये दोनों कारक अपन ने यदि नियंत्रण में कर लिए तो इसमें मुनाफा लाखों करोड़ों में हो सकता है।
1: अब इसकी शुरुआत कैसे करें किसान भाई?
2: जी मुर्गी पालन को लगभग तीन तरीके से पाला जा सकता है, मुर्गियों को मुर्गी पालन तीन तरीके से किया जा सकता है। पहले को बोलते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। बैकयार्ड का मतलब होता है कि जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के अंदर या जो किसान भाई हैं उनका जो निवास है उसी के पीछे जो खाली जगह पड़ी रहती है उसके अंदर मुर्गियों को पाला जाता है।
1: जी
2: जिसके अंदर मुर्गियाँ जो अपनी रसोई से निकला हुआ सामान है और छोटे मोटे कीड़े मकौड़े जो हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं सामान्यतः, और जो अनाज है थोड़ा बहुत उसको खा के अपना काम चला लेती है और अच्छी पैदावार देती है।
1: पैदावार से मतलब आपका अंडा उत्पादन से है?
2: पैदावार का मतलब अंडा उत्पादन से भी है और उसके अंदर खुद के अंदर वजन जो है वो अच्छा वजन आ जाता है उसके अंदर इन सब चीज़ों को लेके। तो वजन का मतलब है यदि हम मुर्गी को मांस के लिए पालें तो भी और अंडे के लिए पालें तो भी। इसमें दिक्कत केवल छोटी सी यही है कि इसको अपन बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर अपन नहीं कर सकते हैं।
1: यदि बड़े पैमाने पर करना चाहें और इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहें हमारे ग्रामीण भाई तो कैसे करेंगे?
2: ग्रामीण भाई यदि व्यवसाय के तौर पर इसको अपनाना चाहते हैं इस व्यवसाय को, तो आपको ये पहले से सोचना पड़ेगा, पहले से आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको जो मुर्गी है वो अंडे के लिए पालनी है या फिर मांस के लिए पालनी है, क्योंकि अंडा देने वाली मुर्गियाँ अलग होती हैं।

0: और मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां अलग होती हैं। जो मुर्गियां अंडे के लिए पाली जाती हैं उनको आप लगभग 6 से 7 महीने के लिए अपने फार्म पर या शेड पर रखते हैं, जबकि जो मुर्गियां मांस के लिए पाली जाती हैं वो लगभग 2 महीने तक ही रखी जाती हैं। उसके बाद उनका जैसे ही लगभग 1.5 से 2.5 किलो वजन आ जाता है उनका, तो उनको बाजार के भाव से बेच दिया जाता है।
1: तो और इसके आधुनिक तरीके क्या हैं?
0: जी, आधुनिक तरीके
1: जैसे केज सिस्टम वगैरह
0: है। जी सर, मुर्गियों को
1: कहाँ पे रखा जाए, बड़े पैमाने पे यदि पालते हैं तो लगभग इसमें कितना खर्चा आएगा, कुछ विस्तार से बताएं।
0: मुर्गी पालन में कुछ बातें बड़ी ध्यान देने वाली हैं, जिसमें एक तो ये कि जो एक मुर्गी को लगभग 2 स्क्वायर फुट जगह चाहिए, तो उसके पहले आप ये सोचें कि आप कितने मुर्गी का फार्म चालू करना चाहते हैं। एक मुर्गी को लगभग 2 स्क्वायर फुट जगह चाहिए, यदि आपने 1000 मुर्गी को पालना है आपको, तो लगभग आपको 2000 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। तो इसके हिसाब से आप पहले तो ये देख लें कि आपके पास जगह कितनी है। दूसरा, मुर्गी को दो तरीके से पाला जाता है। एक तो उनको जमीन पर ही छोड़ दिया जाता है, जिसके अंदर जो चावल का भूसा और जो पेपर रद्दी की कटिंग होती है वो डाली जाती है इसमें, इसको डीप लिटर सिस्टम कहते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसकी भी कुछ सीमित वो हैं, क्योंकि ये मुर्गियां जमीन पर पाली जाती हैं तो इसके लिए जमीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है यदि आपको बड़े स्तर पर करना है। तो यदि जमीन कम है तो उसको अपन केज सिस्टम बोलते हैं। केज सिस्टम क्या करते हैं कि जो लोहे की जालियां होती हैं उसके अंदर मुर्गी को पाला जाता है, उसके अंदर जितनी उसको जगह चाहिए एक मुर्गी को लगभग 2 स्क्वायर फीट उतना दे के उसके सबसे पार्टीशन करके और एक के ऊपर एक जालियां रख के उसमें मुर्गी को पाला जाता है। जो मुर्गी को उसके जो केज सिस्टम है उसी के अंदर उसको खाने की, दाने की, पानी की और अंडे को इकट्ठा करने की ये सारी सुविधाएं उसको उसी जगह पर मिलती हैं।
1: तो केज सिस्टम भी अपना सकते हैं
0: यदि व्यावसायिक और बहुत बड़े स्तर पर करना है अपने को। जैसे यदि अपने को 25,000-50,000 मुर्गियों का फार्म चलाना है तो अपने को फिर केज सिस्टम पर ही जाना पड़ेगा।
1: केज सिस्टम में जैसे आपने बताया कि जालियों में मुर्गियों को रखा जाता है और वहीं पर उनको दाना पानी का प्रबंध भी किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो ब्रॉयलर पालन है
0: जी,
1: इसको भी लोग अपना रहे हैं, इसके बारे में बताएं।
0: ब्रॉयलर जो फार्मिंग है वो ब्रॉयलर सामान्यतः आमतः उन मुर्गियों को बोला जाता है जो कि मांस के लिए पाली जाती हैं। अभी भारत में क्या है कि मांस का जो डिमांड और सप्लाई है, जो उपलब्धता है और जो उसकी मांग है, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। हालांकि बहुत बड़े स्तर पर इस समय पर काम चल रहा है और भारत भी विकासशील देशों में इस समय पर अपना नाम कर चुका है और विदेशों में जो सप्लाई है वो भारत के थ्रू ही हो रही है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे रास्ते हैं कि यदि अपन ब्रॉयलर मुर्गी पालें तो उसको, ब्रॉयलर मुर्गी बहुत कम समय के लिए रखी जाती है फार्म पर, ब्रॉयलर मुर्गी लगभग 2 महीने के लिए रखी जाती है केवल, और 2 महीने के अंदर उसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो के आसपास आराम से हो जाता है। तो कम समय के लिए रखी जाती है इसीलिए ये ज़्यादा मुनाफा देती है ये। तो इसीलिए यदि मांस के लिए मुर्गी को पाला जाए, यदि बाजार भाव मांस के हिसाब से है तो फिर अपने को ब्रॉयलर फार्मिंग पर जाना चाहिए, और यदि आप लंबे समय तक थोड़ा चलाना चाहते हैं फार्म को तो फिर आपको अंडों वाली मुर्गियों की तरफ जाना पड़ेगा, जिनको कि अपन लेयर मुर्गियाँ कहते हैं।
1: लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी विधि की सलाह देना चाहेंगे आप?
0: ग्रामीण के अंदर अब चूंकि पैसे एक बार में नहीं चाहिए, पैसा ऐसा आना चाहिए कि जो लगातार आपके पास इनकम का सोर्स, आय का स्रोत बना रहे। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अंडों वाली मुर्गियों की तरफ जाएं। तो यदि लेयर फार्मिंग आप करते हैं ग्रामीण स्तर पर, जगह की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है, जगह ठीक ठाक होती है, तो यदि किसान भाई या ग्रामीण भाई यदि उसको व्यवसाय के तौर पर लें और अंडे वाली मुर्गियाँ पालें तो उसका काफ़ी अच्छा बाजार भाव उनको मिलेगा और उनके जो रोजगार है उसमें स्थापित होकर अपने परिवार का भरण पोषण बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे।
1: डॉक्टर साहब, अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मुर्गियों को उनकी उचित बढ़वार के लिए
0: जी,
1: ज़्यादा अंडा उत्पादन के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है
0: जी।
1: तो आहार के बारे में बताएं कुछ।
0: आहार, मुर्गियों का जो आहार है, आप ऐसा समझें कि लगभग 70% जो खर्चा है वो मुर्गियों के आहार पर आता है। उस आहार सबसे महत्वपूर्ण घटक है इसका। उसके बाद बचा हुआ 30% के अंदर उनकी बीमारियों पे, उनके ट्रांसपोर्टेशन पे, उनके चूजे खरीदने पे, ये बाकी खर्चे 30% में आते हैं। जो यदि हम पहले ही सोचना पड़ेगा, हमको ये पहले ही प्लान करना पड़ेगा कि हम मुर्गियां अंडे के लिए पाल रहे हैं या फिर मांस के लिए पाल रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो आहार है वो अलग अलग तरीके से होगा। जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं उनको हमको आहार के अंदर कैल्शियम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो अंडे का बाहरी कवर होता है, बाहरी

0: जो लेयर होती है अंडे की वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और हमको मुर्गी अंडे के लिए पालनी है इसलिए उसके आहार में हमको कैल्शियम देना पड़ेगा ज़्यादा। और यदि हम मुर्गियाँ मांस के लिए पाल रहे हैं तो चूंकि हमको बहुत कम समय के लिए रखनी है और बहुत ज़्यादा हमको उसका शारीरिक भार चाहिए कम समय में, तो हम उसके आहार के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे। तो यदि मुर्गियाँ अंडे के लिए पाली जा रही हैं तो उसके अंदर कैल्शियम अलग अलग स्टेजेस पर लगभग 1 से 3% होना चाहिए उनके आहार में, और यदि मुर्गियाँ मांस के लिए पाली जा रही हैं तो लगभग उसके आहार के अंदर 22 से 24% प्रोटीन होना चाहिए।
1: तो ये बना हुआ ही उपलब्ध है या फिर किसान भाई इसको घर पर बना सकते हैं?
0: इसको घर पर भी बना सकते हैं और इसको बाजार में रेडीमेड भी आता है, उससे आप खरीद भी सकते हैं। कई सारी कंपनियां हैं वो ये आहार बेचती हैं, तो मैं ऐसा आपको सलाह दूंगा कि पहले आप एक बार बाहर वाली जो फीड प्रोडक्ट आते हैं वो आप खरीद के देखें। वो लगभग 25 रुपये किलो के आसपास ये आहार मिलता है, 25 से 40 रुपये किलो के आसपास, और मतलब देखना पड़ता है कि किस मुर्गी के लिए चाहिए आपको, उसका अनुमान मैं बता रहा हूँ 25 से 40 रुपये प्रति किलो। और यदि वो घर पे बनाते हैं तो वो लगभग 20 से 22 रुपये प्रति किलो के आसपास पड़ जाता है। तो एक बार आप पहले बाजार से लाके उसको खिला के देखें, आप देखें कि एक तजुर्बा लें कि किस तरह से मुर्गियाँ खाती हैं, किस तरह से पाला जाता है। जब आपको लगे कि आप ठीक हैं इस समय पर और आप अच्छी तरह कर सकते हैं ये पालन, तो फिर आप वो आहार घर पर भी बना सकते हैं।
1: जैसे अभी आपने कहा था कि कुछ बीमारियां
0: जी
1: मुर्गियों में बड़ी तेजी से कभी कभी फैल जाती हैं,
0: जी
1: जिसकी वजह से इस व्यवसाय में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके प्रति सावधानी रखी जाए ताकि इस व्यवसाय में किसान भाइयों को, हमारे ग्रामीण भाइयों को कोई नुकसान ना हो?
0: इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं वो अपने फार्म पे लंबे समय तक रहती हैं, लगभग 5 से 6 महीने तक। जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ हैं वो 2 महीने तक रहती हैं। तो जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें कोई बीमारी या रोग आ जाए। आपके फार्म पर कोई भी एक बीमारी आ गई तो उससे पूरा का पूरी मुर्गियाँ, जब पूरा फ्लॉक बोला जाता है मुर्गियों का, वो एक साथ साफ हो जाता है, एक साथ मर जाती हैं सारी। और यदि सही बाजार भाव मिले तो आपको कई गुना फायदा भी मिल जाता है इसके अंदर। तो जो बीमारियां हैं वो अंडे देने वाली मुर्गियों में लगभग ज़्यादा होती हैं, सामान्यतः ज़्यादा होती हैं। मैं कुछ बीमारियों का नाम बताऊंगा और आपको टीकाकरण भी बताऊंगा उनके बारे में। कुछ बीमारियां मुर्गियों में ज़्यादातर जो लंग्स या जो सांस संबंधी जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी होती हैं, इसीलिए पहले तो जब मौसम बदले तब उस समय पर अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि जो अपन शेड बनाया है उसका वो हवादार हो, लेकिन उसको अपने को ढकना भी है। जब भी मुर्गियाँ लाई जाती हैं, चूजे, जब चूजे लाए जाते हैं तो वो चूजा का वजन लगभग 35 से 40 ग्राम होता है। तो जिस दिन भी दिन हम लाएंगे उस दिन उसके अंदर एक मैरक डिसीज करके होती है, उसका टीका लगाया जाता है पहले दिन, दूसरे दिन रानीखेत बीमारी का, उसके 14वें दिन गंबोरो डिसीज का, और 21वें दिन फिर से रानीखेत का या चेचक का टीका। तो ये 4 टीके ऐसे हैं जो समय समय पर लगाए जाने चाहिए जिनसे कि मृत्यु दर रोकी जा सके।
1: तो डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता, पशु चिकित्सा अधिकारी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बताया कि कुक्कुट पालन व्यवसाय यदि कर रहे हैं तो आधुनिक ढंग से ही करना चाहिए, और आधुनिक ढंग से, आधुनिक तकनीक से जब हम कुक्कुट पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमको फायदा होगा। जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया रो वेपर सुन रहे थे आधुनिक तकनीक से कुक्कुट पालन जा विषय पे भेंट वार्ता, और जा विषय पे जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता, और इनसे बतिया रहे थे श्री SS चौधरी। तो भैया अपन ने जी कितने अच्छी भेंट वार्ता सुनी, और भैया अपन को साय व्यवसाय में अपन को जे भी कुक्कुट पालन करना चाहिए जैसे भैया पर आर्थिक स्तर अच्छा हो सके। और देखो भैया अपन चर्चा और भी करेंगे, लेकिन पहले सुन ले उठे जे संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देखो भैया बहनों, अबे भारत की आगामी जनगणना 2027 को ऐतिहासिक और पूरी तरह से डिजिटल जनगणना हो रही है। ये भारत की 16वीं जनगणना है जो देश के विकास, नीति निर्माण और सामाजिक आर्थिक योजनाओं के लाने सटीक डेटा एकत्र करने को एक सबसे बड़ा प्रयास है। तो भैया बहनों, अपन जे जनगणना अधिकारी और अपने घर आएंगे तो बिना अपनी सही और वास्तविक जानकारी देना है। बिल्कुल सही सही अपने जीवन स्तर, मकान की स्थिति और भैया संपत्ति से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो भैया बिन की अपन को सही से जानकारी देना है। तभी तो भैया अपनी कहा कि जो नाम है भैया सूची में सही जानकारी के हिसाब से

भैया रो अपन सुन रहे थे जे लोग गीत जीखो गावा हो तो हरि किशन और साथी ने। और देखो भैया अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं जल स्रोतों से प्रदूषित होने से बचाए। देखो भैया बहनों जल अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है और अपन सभी देख ही रहे हैं कि अब टाइम चल रहा है गर्मी के मौसम को। और भैया मौसम में तो भैया देख रहे हैं कि पानी को जिस तरह वो कम हो चलो जाऊत है घटा चलो जाऊत है। और भैया कितम कितम के क्षेत्र में तो भैया बहन को स्वच्छ जल दिलाने भैया बहुत ही दूरी तय करना पड़ता है। कोसन तक भैया बहनन को पानी भर के लाने जाना पड़ता है। और अपन सभी देख ही रहे हैं कि जल प्रदूषण भारत के लाने गंभीर समस्या बन चुका है। जल प्रदूषण पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने के संगे संगे मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। जे औद्योगिक अपशिष्ट घरेलू गंदगी रसायनों और प्लास्टिक कचरे के कारण नदियों तालाबों कुओं और तालाबों और भैया झीलें दूषित हो चली जा रही हैं। और भैया रो गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी आज प्रदूषण से जूझ रही हैं। जी प्रदूषित जल के उपयोग से भैया कई तरह की बीमारियां सुई फैल रही हैं और संगे जल प्रदूषण से नदियां, तालाब और भैया झीलें बहुत ही प्रदूषित हो चली जा रही हैं।

जैसे पेड़ पौधे और पशुओं को भी बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। अब ये प्रकृति को संतुलन भी बिगड़ा चला जा रहा है। तो भैया जल प्रदूषण के कारण मछली पालन, कृषि और पर्यटन जैसी गतिविधियों पर भैया प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और भैया आमजन को भी पीवे के लाने पानी स्वच्छ नहीं मिल पाते हैं। तो भैया बहनों अपन सबन को मिल के जल स्रोतों को स्वच्छ बनाना है। बिनमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कहा अपन अपने भैया घरों की साफ सफाई कराते हैं भैया, वैसे ही अपने जल स्रोतों को भी स्वच्छ बनाना है। खुले में शौच के लाने नहीं जाना चाहिए भैया, और भैया शौचालय को ही उपयोग करना है। और भैया अपन खेती किसानी में रासायनिक उर्वरकों को कम उपयोग करेंगे। तो जैसे कहा भी जैविक उर्वरकों को प्रयोग बढ़वे के लाने जैविक खाद को उपयोग करना चाहिए, यानी रासायनिक खादों को कम उपयोग करना चाहिए। जैसे जो रासायनिक खाद बरसात के मौसम में पानी में बह के जल स्रोतों में पहुँच जाते, जैसे जल स्रोत को भैया बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो भैया अपन को ये छोटी छोटी बातों को विशेष ध्यान रखना है। और भैया अपने जो जल स्रोत हैं भैया, तो बिना भैया स्वच्छ रखना है। तो देखो भैया हम आपसे चर्चा तो और करना चाहते क्या करें भैया, लेकिन घड़ी की सुई अपन को भैया इशारा कर रही है कि अपने चौपल कार्यक्रम को अब समय समाप्त हो चलो है। तो अपनी बहन रजनी को आज्ञा दो, राम राम, जय जवान।

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और तेलंगाना दौरे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद, वारंगल, संगारेड्डी और बेंगलुरु में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने संस्था के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं युवाओं को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने में मदद कर रही है।
2: साथियों, बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है।
1: द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 10 मई के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: कि इसी दिन वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने साहस और वीरता की इसी विरासत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।
1: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी

0: वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच देश के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
0: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं आज देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: बेंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडिबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी। साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहां ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। ये पार्क काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
0: अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
1: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत गाजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब

0: 5,500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना, संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
0: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंजन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1,500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़े कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
1: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग, MSME तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
1: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ के उद्योग, यहाँ के MSME, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
0: कर्नाटक और तेलंगाना की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और देश में बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सभी परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। इन परियोजनाओं से न केवल दक्षिण भारत में संपर्क और निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

0: इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसे लिखा है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: सुर्खियों में
2: अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, कोविड 19 के दुष्प्रभावों से हुई अपार जनधन की हानि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कोरोना महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके दुष्प्रभावों से अछूता रहा हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी किसी न किसी तरह से इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों पर कोविड काल में हुए लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक तरह से उनके सामने रोजी रोटी का, जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पुनः जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून सन 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को, या कहें कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर छोटे व्यवसायों से जीवन यापन करने वाले लोगों को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर एक निर्धारित राशि उन्हें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिससे इन पथ विक्रेताओं का व्यापार व्यवसाय बढ़े और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो आज के कार्यक्रम डगर विकास की में हम जानेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमें जानकारी दे रहे हैं जिला शहरी विकास अभिकरण छिंदवाड़ा में पदस्थ सिटी मिशन मैनेजर श्री उमेश प्यासी जी।
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीएम स्वनिधि योजना ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। यह उन गरीब लोगों के लिए है जो रेहड़ी पटरी में अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, रोड साइड्स में अपने जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह भारत सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। पान ठेला वाला हो गया, गुपचुप हो गया, सब्जी वाला हो गया, छोटे मोटे बुटीक्स वाले हो गए, छोटे किराना दुकान के लोग हो गए, ये उसके लिए पात्र हितग्राही होते हैं। हितग्राहियों का जो सिलेक्शन है, हम लोग पूरे जिले में हमारे जो नगरीय निकाय हैं वार्ड मुरीर के माध्यम से और माननीय पार्षदों के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से और हमारा जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को पात्रता अनुसार बताते हैं कि ऐसे हितग्राही आप यहाँ हमारे पास भेज सकते हैं इस योजना से लाभान्वित होने के लिए। यह योजना 3 चरणों में लागू है। प्रथम बार जब कोई हितग्राही होता है तो उसे हम 15,000 का लोन शासन के माध्यम से दिलवाते हैं। 15,000 का लोन उसे पूरे 12 माह में पटाना होता है। यदि वह नियमित पटाता है, 12 माह के बाद जब वह पटा देता है तो एनओसी लाता है हमारे पास में, फिर उसको हम 25,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। 25,000 को उसे 18 माह में पटाना होता है। यह पूरी तरह से एक तरह से लोन है वह गरीब परिवार के लिए जो बड़े बड़े शाहूकारों के पास में जाता है और अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए अधिक ब्याज में पैसा इकट्ठा करता है, तो उसके लिए हम शासन के माध्यम से उन गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से यह ऋण उपलब्ध कराते हैं। 25,000 की राशि को वह 18 माह में जब पूर्ण कर लेता है, इसके बाद उसे हम 50,000 की राशि देते हैं। 50,000 की राशि को उसे 36 माह में पूर्ण करना होता है। और आपको सबसे अच्छी बात हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष से क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। यानी वह हितग्राही जो 25,000 पटा चुका है या 50,000 का उसका रनिंग लोन चल रहा है, उसे शासन जो है 30,000 का क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने के लिए अवसर देता है। वो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, उन नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से उसको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारे लगभग 250 क्रेडिट कार्ड इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है और हितग्राहियों के पास वो जा चुका है और उसको वो लोग एसेस करने लगे हुए हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमको जो लक्ष्य था शासन के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर का, वो लगभग 5,468 लोगों को हमें लाभान्वित करना था। उसमें हमारे पास में जो एप्लीकेशन आए थे वो 7,128 एप्लीकेशन आए थे। बैंकों की प्रक्रिया करने के पश्चात 7,735 लोगों को हमने इस योजना से लाभान्वित किया है। योजना 2030 तक अभी रनिंग है। दस्तावेजों में उनके पास में उनका स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका स्वयं का पैन कार्ड होना चाहिए, स्वयं का बैंक का पासबुक होना चाहिए। पासबुक ज्वाइंट नहीं चलेगा कि दो फैमिली मेंबरों का एक पासबुक हो, उसका इंडिविजुअल पासबुक होना चाहिए। और किसी प्रकार से वह एनपीए नहीं होना चाहिए। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए कि कहीं किसी ने लोन ले लिया हो और कभी पटाया ना हो। ऐसे हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास होता है पूरी पारदर्शिता के साथ में हम लोगों को बैंकों तक पहुंचाएं। हमारे भारत के जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के बैंक हों, सभी बैंकों को शासन के माध्यम से टारगेट दिया जाता है। बैंकों में अधिकतम जो उनकी सीमा तय की गई है शासन द्वारा कि 15 दिवस के अंदर हितग्राही को लोन की प्रक्रिया करा दी जाती है। और आपको मैं ये बताऊं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि इस योजना में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और हमारे छिंदवाड़ा जिले में मैं आपको ये बता दूं, 24,000 लोग पथ विक्रेताओं को हम इसमें से लाभान्वित कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि छोटे व्यवसायियों के लिए यह योजना वरदान के रूप में है। और जो लोग अभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, मैं उनको आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि वो यहां आएं। मेरे जिले के सभी नगरीय निकायों में योजना लागू है और नगर निगम छिंदवाड़ा में योजना कार्यालय के माध्यम से योजना संचालित होती है। यहां आएं, इस योजना का लाभ उठाना सुनिश्चित करें।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके और वे इसके जरिए अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाकर इसे आगे बढ़ा सकें, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो बैंक इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर जानकारी देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक श्री सुशांत मिश्रा ने हमसे बात की।
2: नगर निगम के द्वारा बैंकों को इसका प्रकरण वो लोग हितग्राही को चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जो भी उनसे दस्तावेज लेना होता है लेकर PMS पोर्टल के माध्यम से बैंकों को प्रेषित करते हैं। और इसमें जिले के हिसाब से जितने यहाँ पे हितग्राही आइडेंटिफाई होते हैं साल में, उसके हिसाब से अलग अलग बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को भी नगर निगम के द्वारा लक्ष्य प्रेषित किया जाता है, जिसमें कि वर्तमान में 15,000, 25,000 और 50,000, इनके अलग अलग लक्ष्य बैंकों को दिए जाते हैं। और जैसे ही पोर्टल पे प्रकरण आता है तो हम हितग्राही को सूचित करते हैं कि आपका प्रकरण हमें प्राप्त हुआ है, आप अपने आधार कार्ड के साथ और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसके साथ बैंक में आ जाइए। फिर हम उनका सिविल जनरेट करते हैं। सिविल जनरेट करना जरूरी नहीं है, उसमें कोई मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल खाता कोई जो उनका चालू लोन है वो एक भी खाता उनका NPA नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कोई प्रकरण इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम उनको फिर एक डेट दे के बुलाते हैं कि इस डेट पे आप आ जाना। हम उनकी पूरी तैयारी करके रखते हैं, दस्तावेज बना के रखते हैं, साइन कराते हैं, उनका लोन खाता खोलते हैं और जिस भी कैटेगरी में वो पात्र हैं 15, 25, 50 उसके हिसाब से लोन का अकाउंट खोल के वितरण करके उनके बचत खाते में पैसा डाल दिया जाता है, जिसको कि वो अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए खाते में से पैसा निकाल के यूज करते हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको अपने पैर पे खड़े होने का सरकार के द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि बैंक से पैसा ले, रोजगार शुरू करें, उसको समय से चुकाएं और खुद की और अपने परिवार के प्रगति में बैंकों को अपना सहयोगी बनाएं।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित पथ विक्रेताओं का, स्ट्रीट वेंडर्स का उत्साह देखते ही बनता है। इस योजना से जिस तरह उनका व्यापार व्यवसाय दिनों दिन बढ़ रहा है, इससे उनमें आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ है। अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित ये हितग्राही।
3: जी, क्या नाम है आपका?
4: हेमलता सूरवंशी।
3: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़ी?
4: 2024 पे।
3: तो आपको प्रारंभ में कितने का लोन आपका सैंक्शन हुआ था?
4: 10,000 का।
3: तो इसका उपयोग आपने किस काम में किया?
4: जनरल स्टोर पे।
3: तो उससे फायदा है आपको?
4: जी।
3: क्या लाभ मिला आपको उससे?
4: उससे भी हमारी छोटी दुकान होती उससे लगातार त्रास होते हुए उससे फायदा होने के कारण हमने और बढ़ाया, उसको बढ़ाते हुए उसका आगे चल रहा है काम। 10,000 का लोन पूर्ण होने पर 20,000 का फिर से फार्म भरे, फिर 20,000 मिले, उससे फिर से लगातार काम चालू है। अपनी दुकान भी चलाती जा रही, किस्त भी पड़ती जा रही। अब 20 का पूर्ण हो गया, अब मैं 50 का अप्लाई करने आई हूँ। PM स्वनिधि से हम योजना से बहुत फायदा मिला है सर, और बहुत अच्छी योजना चल रही। आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ लेने वाले एक और लाभार्थी हितग्राही से हम बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार।
5: जी नमस्कार। जी
3: क्या नाम है आपका?
5: मेरा सदन कुमार मालवी।
3: अच्छा सदन जी, ये बताइए कि आपकी हम दुकान देख रहे हैं जो आप चलाते हैं, जैसे कि आप एक पथ विक्रेता हैं, ये बताइए कि कब से आपकी दुकान है?
5: ये मैं 10-12 साल करीब हो गया है। जी जब से चला रहा हूँ
3: जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़े?
5: मेरे को लगभग 2021-22 से जुड़ा हूँ मैं इसमें। हालांकि मैं पहले आर्थिक रूप से काफी कमजोर था, मुझे जब ये योजना का लाभ मिला, जब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ काफी लाभ मिला मेरे को और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। पहली बार मुझे बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए इस योजना में मिला, जिसके तहत मैंने कहना चाहिए सफलतापूर्वक कार्य किया तो उसको मैं जमा कर चुका। दूसरी बार मैंने आवेदन लगाया तो मुझे डबल मिलने का बताया गया बैंक से कि भाई एक बार आपने जमा कर दी तो दूसरी बार में आपको डबल मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा, आप ऐसी योजना का लाभ लेंगे और ऐसा क्रियान्वयन करते रहेंगे अपने बिजनेस का तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे बढ़ने का भी काफ़ी सहयोग मिला बैंक से भी। पीएम स्वनिधि योजना जो चल रही है, ये योजना से हम लोग को कहना योजना बहुत अच्छी है सभी हितग्राहियों के लिए, आगे वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। गरीब परिस्थिति के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहिए। वैसे
0: निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केवल एक ऋण योजना ही नहीं है, बल्कि देश के रेहड़ी पटरी या पथ विक्रेताओं के सपनों को उड़ान देने का एक जरिया है। आज ये योजना हमारे पथ विक्रेता बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जब एक छोटी पूंजी के व्यापारी का हाथ मजबूत होता है तो देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है। स्वनिधि से समृद्धि की ये लहर अब हर गली हर मोड़ तक समृद्धि का संदेश पहुंचा रही है। पथ विक्रेताओं के जीवन में एक नई सुबह लेकर उनके सपनों को साकार कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो भी पथ विक्रेता बंधु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को गति देना चाहते हैं, वो नगर निगम के योजना कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा का था, संपादन अनिल सनोडिया का, संयोजन अल्पना गोलेन्द्र का, प्रस्तुति सहयोग दीपांकर तिवारी और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की।

नगर विकास की। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना, विषय था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। फकीरा फिल्म का गीत सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र।

श्रोताओ, अभी आपने फकीरा फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में सुना। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। और आइए अब सुनते हैं तराना फिल्म का गीत। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने। रविंद्र रावल ने यह गीत लिखा है और इस गीत को संगीत से संवारा है राम लक्ष्मण ने।

शैलेन सिंह के गाए तराना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है छोटे से अंतराल का।

मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के शहर हैदराबाद में बुनियादी ढांचे और सनअत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिनकी लागत तकरीबन 9400 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्टों का मजमू मकसद रियासत को मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बनाना, कनेक्टिविटी को मजबूत करना, रोजगार के मौके पैदा करना, लॉजिस्टिक्स की इस्तेदाद में इजाफा करना, हिफाजत में इजाफा करना और लोगों को सफर में बेहतर सहूलियात फराहम करना है। वज़ीरे आज़म मोदी ने इस्तेमा से खिताब करते हुए कहा कि भारत मरकज की तरफ से किए गए इकदाम की वजह से मगरबी एशिया की महाजराई से उभरने वाले तवानाई के बहरान से मुअसर तौर पर निमट रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन के इस्तेमाल में जिस तहमुल से काम लिया गया है वो वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दरामद की गई पेट्रोलियम मसनूआत को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे गैर मुल्की जरे मुबादला की बचत और जारी महाजराई के मनफी असरात को कम करने में मदद मिलेगी।
1: सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत इस्लाहात के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो तेलंगाना में हर कुनबे को यकीन दिलाना चाहेंगे कि मरकज आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए और ज्यादा रफ्तार के साथ काम करेगा।
1: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
0: आज जिन बड़े प्रोजेक्टों का आगाज किया गया उनमें वरंगल में पीएम मित्र पार्क भी शामिल है, जिस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। भारत के तारीखी इम्तियाज को एक आलमी इक्तिसादी ताकत के तौर पर याद करते हुए, जब कपड़े की सनअतें यकसर तब्दीली लाने वाला रोल अदा करती थीं, वज़ीरे आज़म ने मौजूदा इकदाम के जरिए इस अहम शोबे को नई जिला बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया।
1: आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मुमकिना सैलाब और शदीद गर्मी

0: सूरतहाल से निमटने की तदाबीर के तौर पर एक जायजा मीटिंग की। नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मुअस्सर तौर पर निपटा जा सके। वजीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया, जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ्फुज़, दरिया के इंतजाम के इकदामात और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आईन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में दो किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निजाम से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वजीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफी होती है तो आईन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाजे खुले हैं, और अगर किसी कमजोर शख्स की आवाज दबाई जाती है तो अदालतें इनकी आवाजों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वजरा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वजराए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीनी वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफवीज किया गया है। गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने जनभवन लखनऊ में आज नए वजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वजरा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वजरा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक्के दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर मुमलकत बनाया गया है। कानून साज कौंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मुमलकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर मुमलकत अजीत पाल सिंह और सुमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, निज इलाके के गांवों को पानी की मुसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज योम मादर के मौके पर मुंबई में माओ की गजाइयत की किट्स तकसीम की। जनाब गोयल ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि खसूसी तौर पर तैयार की गई इन किट्स को हमल के आखिरी मरहलों में खवातीन की गजाई जरूरतों और नौमौलूद बच्चों की जरूरतों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र की रियासती खवातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रूपाली चकनाकर से खसूसी तहकीकाती टीम ने नासिक में खुद साख्ता बाबा अशोक खराज से मुबैना ताल्लुक के मामले में पूछताछ की। अशोक खराज के जरिए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात और उसके सियासी रवाबित के ताल्लुक से छानबीन के लिए यह खसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई थी। IPS अफसर तेजस्वी सतपुते की क्यादत वाली SIT ने नासिक में वाकई महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी में आज से तहकीकात का आगाज किया। भारत और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने सेहत, सियाहत, हिजाने सेहत, बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत वजीर खारजा एस जयशंकर के करेबियाई मुल्कों के दो रोजा दौरे के दौरान किए गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वजारत खारजा और कैरिकॉम अमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लेस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नेल्सन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तजदीद करने के मकसद से किए गए। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद विशेष

0: और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। ये बातचीत दो तरफा तआवुन को तौसी देने से मुतल्लिक मीटिंग में पिछले साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे में किए गए ऐलानात पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी अहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेज मादे से लदे ट्रक पर फायरिंग की जिसके नतीजे में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूकबरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। इस शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी अहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण ज्योत के तर्जमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दीगर चार दरखास्तों पर अपने अहकाम महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टोग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने के मकसद से अमरीका की ताजा तरीन तजवीज पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुजाकरात में खित्ते में तनाजे को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो जंग खत्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आजम से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमेरिका की सालिसी वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान रूस की वजारत दिफा ने इल्जाम लगाया है कि कीव ने जंगबंदी की 1000 मरतबा से ज्यादा खिलाफ वर्जी की जिसमें शहरी इलाकों और सरहदी चौकियों पर हमले भी शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के प्रभास पाटन में वाकई है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुकद्दस तस्वीर किया जाता है। ये अपनी तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुनासिबत से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव कल दो चीतों को कूनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। यह दुनिया का पहला बैन बर्रे आज़मी बिग कैट मुंतकली का प्रोजेक्ट था। मिजोरम में कावरथा शुमाली गांव कौंसिल ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार पंचायत के जुमरे के तहत कौमी सतह पर आला तरीन मकाम हासिल किया है। काउंसिल को यह मकाम मुसलसल देही तरक्की माहौलियात के तहफुज के लिए उसके काम पर दिया गया है। निशानेबाजी में भारतीय जोड़ी नीरू धांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इसी के साथ भारत ने आज कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की है। नीरू और विवान के लिए किसी ओलंपिक मुकाबले में पहला आईएसएसएफ वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9400 करोड़ रुपए है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतल्लिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत हिफ्जाने सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आपके फरमाइशी गीतों के साथ, आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खेमरिया। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर मयंक रेडियो श्रोता संघ नवाबगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक, अंबेडकर चौक खुरई से फरमाइश की है राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लराम पूरन, रोहित छोटू और समस्त परिवार ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लम्हे फिल्म का गीत लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं शिव हरी।

0: अगला फरमाइशी गीत सच्चा झूठा फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश की है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने। रेलवे कॉलोनी बठिंडा से इस गीत को सुनना चाहते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।
1: यूं ही तुम मुझसे

औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमन दीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, भिट्टा बजाज और साहिल। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। आप सभी ने फरमाइश की है बाजीगर फिल्म के गीत की। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, नवाब आरजू की शब्द रचना और अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अगली फरमाइश है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंदार्य, अभयनंदार्य, परमानंदार्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। आप सभी ने फरमाइश की है काजल फिल्म के गीत की। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार साहिर और संगीतकार

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, आप सभी सुनना चाहते हैं हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं रवि।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा We bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
0: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hai. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein Veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर इमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वाज बोर्न इनटू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Vishishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar-style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण

0: भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।